0: ना।
1: क्यों?
0: इसलिए कि शर्मा न जाए।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा जी से। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, शागुस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और ऑजी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगो गार्सिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। हालांकि इस बुनियादी मतभेद के बावजूद व्हाइट हाउस के प्रमुख ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ संबंधों और अच्छी समझ की सराहना की। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज दिन के 1 बजे के करीब पोर्ट लुइस पहुंचेगा। जहाज पर 9,000 मेट्रिक टन से अधिक पेट्रोल, 10,262 टन डीजल और विमानन क्षेत्र के लिए 15,500 टन जेट A1 मौजूद हैं। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर हैं और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालिक समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। और आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। और अब आखिर में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय शाम को बादल घिर आएंगे देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर। बाकी इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से शाम के समय दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये फ्लैश न्यूज यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे।
2: You're listening to RM3 Radio, मन

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये डाल एफएम है, शामिल मोहतरम परवीज़ा का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप तमाम सामईन खुदा के फजल करम और रसूल खुदा ताजदार मदीना हबीब किबरिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खैर वाफियत से हैं। सब अल खैर की मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप सभी लोगों का इस रूहानी महफिल में दिली खैर मकदम है। तो आइए मज़ीद सामीन, मामूल के मुताबिक आज की उर्दू नशरियात का आगाज़ कुरान पाक की आयत मुबारका से करें। बग़ौर बादब समात करके अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है जानने वाला है।

बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं, नहीं बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, नहीं बल्कि ये एक शायर है, तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे?

0: مُسْرِفِينَ
1: और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो, और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे, फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया।

और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया।

और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है, और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है।

0: और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं।
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟

0: अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी।
1: अमित

क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो, ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं, बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं, और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो।

और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं, उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करती हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम दोजख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।

0: क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं।
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दबाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे।

इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोजख की आग को रोक न सकेंगे और न अपनी पीठों पर से और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि कयामत उन पर यकायक आ वाके होगी और उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा।

0: कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है। बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी।
1: बल मत्तअना हाउलाई वआबाहुम हत्ता ताला अलैहि।

बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आती हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं?

कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं, और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा आजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे।

तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफी हैं।

और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और कयामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो।

0: और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम के इल्हामी आयात जो रूह को बालिदगी और दिलों को जिलाए बख्शती हैं, कि रूह परवर तिलावत आपकी समातों से गुजर रही थी। खुदावंदे कुदूस हमें उन मुकद्दस कलामों को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। समातों को बालिदगी बख्शती उस रूहानी रोशनी के बाद आइए अब अपने दिल और जबान को उस ज़ात पाक की तारीफ व तौसीफ से मुअत्तर करते हैं जिसने कायनात की हर शय को अदम से वजूद का पीराहा पहनाया।

0: ऐ महबूब तेरी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ, सारे जहां का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सर पर सचता है। हमने जान लिया, हमने मान लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोनों जहानों के बादशाह हैं। शहनशाह बगदाद, पीरों के पीर, पीरान पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, मुहीउद्दीन सैयदीना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का महीना आप तमाम अहले इस्लाम को मुबारक। इस्लाम के अजीम वाली और सरखिले मशाइक हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है के दिल की सफाई इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, और इल्म व नूर है जो दिल को अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जाता है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद आज का मुख्तसर सा बयान सुनते हैं। जामा मस्जिद के खतीब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी साहब की ज़बानी
1: है, परवीज़ा के साथ है उर्दू नशरियात सबल खैर में दिन के 7 बजे तक, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। रसूल मकबूल सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नेक और साले लोगों के ज़िक्र के साथ अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं, और जब जिक्र हो रईसुल औलिया मुहीउद्दीन कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, तो दिलों में अकीदत और मोहब्बत की एक अजीब सी शमा रोशन हो जाती है। समाअत फरमाइए मुअज़्ज़िज़ सामईन आज का बयान।
0: जामा मस्जिद के खतीब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी साहब की ज़बानी।

कोई माफ करने वाला बख्शने वाला नहीं है, बस तू ही माफ करने वाला है। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक, तू मुझे अपनी जानिब से बख्श दे। वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा। इन्नक अंतल गफूर रहीम, बेशक

शामिल मोहतरम, ये आरएम फ्री हैं आपके लिए, पेश हो रहा है उर्दू प्रोग्राम सवाल खैर। गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अपना इरशाद पाक है, मेरा मुरीद चाहे मशरिक में हो या मगरिब में, मैं हर हाल में अपने मुरीद की निगहबानी करता हूँ।

अरवी का चांद चमका, दिल मेरा रोशन हुआ। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे लब पे या गौसे पाक हैं। जिनके दामन से बंधे हैं वो है सुल्तान विला, जिनका दरबार है कसों का माल जाओ मावा हुआ। मजी सामीन, जिंदगानी का असल मकसद सिर्फ सांसें गिनना नहीं, बल्कि उन लम्हात को समेटना है जो अल्लाह की याद और उसके प्यारों की मोहब्बत से मुत्तर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का ये रूहानी प्रोग्राम हमारे दिलों के लिए सुकून, रूह के लिए बालिदगी और हमारी अमली ज़िंदगी के लिए मशअलेरा साबित हो। फिर मिलेंगे इसी हवा के दोष पर एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। परवीज़ा को इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें और अपनों की मोहब्बतों के साए में महफूज रहें। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

नक्की अहीं कंईक बदलायुं छे, थई भेद कंईक आँखोमां संतायुं छे। अहीं उभा एज वृक्ष अडीखम अने एज पक्षीओ अहीं सामे रमे छे। लो फरी चाल्यो आ समय पण त्यांथी अने लई गयो ए उमड़को जे बेऊने गमे छे। खूटे छे कंईक, भले जणातुं नथी के शुं खोवायुं छे, पण नक्की

पौने 11 बजे बज चुके हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप सबको, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री रेडियो, और हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:30 बजे तक। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। तो सबसे पहले श्रोताओं, चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं एक गणेश वंदना के साथ।

श्रोताओं कहते हैं जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ मन को असीम सुकून और शांति मिलती है। भगवान और भक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धा से बाधा इस संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। जो व्यक्ति पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है उसके मन से दुनिया का हर डर समाप्त हो जाता है।

श्रोताओं, भगवान तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है, केवल सच्ची आस्था और भक्ति ही वे माध्यम है जो हमें उनसे जोड़ती है। जो भक्त भक्ति के रंग में पूरी तरह डूब जाता है, उसे इस संसार का या किसी भी कल का कोई डर नहीं रहता, उसे केवल अपने इष्ट की फिक्र होती है।

11:20 हुए हैं श्रोताओं, आपने साथ दिया इस कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। भगवान सदैव आप लोगों की कृपा बने रहे। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। रिजवी के ओक्टावियो ऑडिटोरियम में आज सुबह, जी हाँ ये समाचार फिर से सुन लीजिए। आज इबेन में मूवमेंट मिलिता मोरिसिया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके दौरान एमएमएम के 57वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि ये समारोह रविवार को ओक्टावियो रिजवी के ओक्टावियो ऑडिटोरियम में लगेगा। कृषि उद्योग मंत्रालय या छोटे किसानों को बीज और फलों के पौधों के उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इच्छुक किसानों के लिए दो कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम लौकी, बैचिसों और खीरे के बीज उत्पादन से संबंधित है। इसके तहत 57 किसान शामिल हैं और क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड प्रोग्राम के अंतर्गत 80 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के एक नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्वेन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई, जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज दिन के करीब 1 बजे पोर्टलिस बंदरगाह पहुंच रहा है। और आज मनाया जा रहा है आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद में प्राकृतिक जीवन शैली, पौष्टिक आहार, योग, ध्यान और औषधीय पौधों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेश में न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र चल रहा है, शाकुस द्वीप समूह मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप और एंडी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शाकुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। अवनी मुताई लाबुत में 78 साल की 78 years old श्रीमती विल्दिया गोरीबा, श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाशी नाम चेदी और जिन्हें लोग जेल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान अवनी मुताई लाबुत से उठाकर सैजोज ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रात 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: On MBC Play and MBC.MU.
3: You're listening to RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: सुहाना सफर प्रोग्राम के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं, स्वागत, नमस्कार। 12:09 हुए हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस साथ देने आई हूं और साथ ही रहूंगी मैं आपके अभी से लेके 2 बजे तक। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल, तबीयत आपके ठीक ठाक हैं और हमारे इस लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टिकटॉक जो है वो भी लाइव शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: दिन के 12:15 हुए हैं। स्वागत आप सबों का रेडियो मनोरंजन RM3 पर। मैं हूं विनीता। कैसे हैं आप लोग? वैसे यहां पर हमारा टिकटॉक लाइव है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेडिकेशंस यहां पर भी भेजी जा सकती हैं, जैसे कि यहां पर वेदना है काटरबोन से साथ दे रही हैं। और चलिए अगला गाना आपके लिए। वानी नमस्कार, स्वागत है बनापीछे आपको। रागिनी वीरन नमस्कार, नमस्कारम आपको बबीता। और जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी लोग जो बस जुड़े हैं और मैसेज नहीं करते, उनको भी हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबी को हम कहेंगे नमस्कार। और चलो कहती हैं कि अच्छा लगा देखकर आपको, हमें भी बहुत अच्छा लगा। शैला बाबूराम नमस्ते दीदी, कैसे हो? चले जी आपके लिए गाना चलाएंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय नीन, कैसे हो? लैला मुदारन आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला गाना है वो हमने लिया है फिल्म कालिया से। शायद ये गाना आपको पसंद हो, और अगर आप प्यार में हैं तो ये गाना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसे भी आप इंजॉय करें, अपने अपनों के साथ डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
2: You're listening RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी हाँ, ये है LOVE यानी कि प्यार, प्यार यानी मोहब्बत, मोहब्बत कह लीजिए। चलिए तो यहाँ पर प्यार से हमारे बहुत सारे दोस्त साथ दे रहे हैं, उनको भी तो हेलो बोलना बनता है। हमने तो लव अ गर्ल सुना था, यहाँ पे तो लव अ बॉय आया है। नमस्कार आपको, समीना सुब्राची सूर्या कहते हैं। फिजी में भी 8 बजे हैं रात की। ओके, हमारे यहाँ 12:22। ओके, तो यहाँ पर रोहित हैं सुरीनाम से और परी को कहेंगे वेलकम स्वागतम। उत्तम, अति उत्तम आप भी हमारे साथ हैं, सो आपका भी स्वागत है। वी हैव रॉय और विनोद हमारे साथ हैं। नमस्कार सन, डीजे हैं फ्रॉम यूके, हेलो डीजे कैसे हो। एंड वी हैव जय फ्रॉम डबन साउथ अफ्रीका। पूनम को कहेंगे हाय, शी रेश सरोज एंड रविंद्र कमित को कहेंगे नमस्कार। सुबिता कौशिक जिमी जिमी जिमी जिमी आजा आजा आजा, यहाँ पर जिमी के साथ साथ विमी भी हैं, नमस्कार आपको कहेंगे कियाना। और चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना दीपा के नाम डेडिकेट करेंगे। कहती है मेरी बेटी का आज बर्थडे है। कमाल है दीपा जी, बेटी का नाम तो लिखा ही नहीं आपने। पूजा है फ्रॉम क्यूबेक, कहते हैं यहाँ पर सुबह के 4 बजे हैं। 4 बज गए हैं, ओके। कहते हैं अभी हम उठ रहे हैं काम पर जाने के लिए और आपके गाने ने तो हमारा मूड ही बना दिया। सो आई एम सो हैप्पी कि हमारे गाने ने अपना जादू कर दिया। यहाँ पर बिंदर कैसे हमारे साथ हैं, अफसोस हम उनका मैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। सो अगर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में तो चलेगा। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव ए बी यानी कि नाज हमारे साथ हैं। रेड राम रिचा जी कैसे हो, वेद जी, तैयब भोला और साथ में यहाँ पर हमारे हैं रमज़ान, थैंक यू। गाना जो है यहाँ पर मालिनी हमारे साथ, कहते हो कैसी हो बसंती।

0: मेरा नाम है बसंती पहली बार पता चला नहीं लोग कहते हैं थैंक यू सरिता थापा नमस्कार एंड मालिनी का वेलकम करते हैं अनीता रामधनी आप हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी सिस्टर हैं सुनीता मेरी एंड नीता उनके लिए गाना होगा वैसे कुमार सानू का गाना जो है हमारे लिए मुश्किल है हम एंड में कोशिश कर सकते हैं एक गाना चलाने के लिए क्योंकि ये पुराने गीतों का प्रोग्राम है यहाँ पर सिर्फ पुराने गाने चलते हैं महिमा स्वागत वेलकम आपका एंड हेलो प्रिंस कैसे हो आपका भी वेलकम करते हैं और करुणा और बिंता का भी
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

चलिए यहाँ पर फिजी से फारूक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप सुन रहे हैं समय रेडियो मनोरंजन वेदिता के साथ, आपके अपने RM3 रेडियो मनोरंजन, और प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर. थैंक यू.

0: RM3 Radio.
1: कहते हैं कि प्यार का जो दर्द होता है ना वो मीठा मीठा होता है। हम तो कहते हैं कभी खट्टा खट्टा भी होता है, कभी तीखा तीखा भी होता है, लेकिन प्यार प्यार होता है।

है इसी प्यार के साथ अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए नम्रता पूजा मनीता राम राम आपको रियान आपका वेलकम है मनोज जी स्वागत है आपका एंड थैंक यू मालिनी फॉर लविंग द सॉन्ग रोशनी नमस्कार थैंक यू सूर्या साथ देने के लिए

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। वेलकम टू सुहाना सफर, आपका प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पे चल रहा है, विदिता का साथ है। चलिए यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे किसके लिए, ये भी जान लेते हैं। मैजिक गोकू, आपका भी हम वेलकम करते हैं यार, थैंक यू सो मच। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें और आपकी खुशी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हेलो एस बी, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी देवीना बंधु, हेलो। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे मैसेज हैं, नाम नहीं आया है। पूजा, थैंक यू एंड होप यू लविंग दिस सॉन्ग। समाधवी डोमर, नमस्ते आपको कहेंगे। एंड हाय बैन, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग्स। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू। हमारे साथ हमारे टिकटॉक पर जुड़ने के लिए भी संजना मनोरथ को कहेंगे वेलकम। और साथ में यहाँ पर बबीता गुदुरी हमारे साथ है। बबीता गुदुरी, आप कहाँ से हैं? वैसे आपने कहा है कि नेक्स्ट गाना आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। अंशा गणपत, नमस्कार। एंड मनीता जी कहती हैं कि प्यार का दर्द कभी मीठा नहीं होता, नामुमकिन, ना नेवर। मीठा नहीं होता, ओके कोई बात नहीं, अगर तीखा होता है तो कुछ खट्टा लगा लो, सैलड हो जाएगा। और यहाँ पर विमला लक्ष्मण के लिए गाना होगा। रोशनी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और करुणा, आपका भी वेलकम करते हैं हम। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आप अपने लंच में हमारे खाने को भी एंजॉय कर रही हैं, स्वाद आ रहा है खाने में। रुकैया पॉपुलर जो स्टोर है वहाँ पर काम कर रही हैं, उनको कहेंगे भोंकुआज। रोशनी और उनके सभी फैमिली के लिए माधुरी एक दो तीन करते हुए फाइनली आ गई। अंश, विशा, पूजा एंड उर्मिला कहती हैं हेलो फ्रॉम होलैंड। हेलो होलैंड वालों, कैसे हो?
1: RM3 रेडियो।

0: ना सफर हाँ ना सफर।
1: डेडिकेशन का टाइम आ गया है। अगला गाना होगा नीलू के लिए, प्रमिला मधु, चीना, वनिसा के लिए जो काम कर रहे हैं, रीता देवी नामा, ललिता, साथ में हंसराज बायरवा और साथ में है विमला देवी, ज्योति चमन, साहिल जो कि समय काम पर हैं और सभी उसको भाभी का बच्चा बोलते हैं। तो चलिए उन सभी दोस्तों के लिए, आपके प्यार के लिए और ऐसे उसको सताते रहना, ठीक है। अनिल जी के लिए भी जो इस समय साथ दे रहे हैं, अब्दुल और सैरा बानू के नाम, शारदा उदब, शर्मिला बुदन और विहाव शवि, वीना बकोरी, लक्ष्मी गिरवर, नीता मनिक, द्रवीण जो साथ दे रही हैं, एंड गिरवर जी, जयराम की, जयराम जी की आपको, कविता, पुवन आपका भी हम वेलकम करते हैं, ललिता आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए विद्या और लाहौजा से साथ दे रही हैं, थैंक यू फॉर लविंग द शो। यहाँ पर हमारे साथ कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके गाने, थैंक यू। अबरार जो है वो हमें लाहौर से सुन रहे हैं, ओ वाओ, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे गाने अच्छे लग रहे होंगे एंड आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। और यहाँ पर विनोद जी हमारे साथ हैं, विमला जी हमारे साथ हैं, लीजा वेलकम, नमस्कार। और यही गाना हम ललिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, गुड वाइब्स एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू शवि। और यहाँ पर गाना होगा परी, माधुरी और सभी बहनों के लिए, साहिल की तरफ से कहते हैं प्रणाम।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: अभी गाना आपने सुना था कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। हेलो श्वेत्स, कैसे हो? तो यहाँ गाना है, कहता है कि क्या यही प्यार है। अब यहाँ पे प्यार को कुछ अलग तरीके से इसको समझाया जा रहा है। अब आपको प्यार कैसा लगता है मैं नहीं जानती, अगर बताना है तो ज़रूर बताएगा। शबीना थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना आपकी सासू माँ के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे।

0: प्यार है।
1: भाई मुझे तो नहीं पता कि प्यार क्या होता है, बस इतना जरूर पता है कि जो मुझे मिलता है हमारे लिसनर्स से वो प्यार होता है, और इस प्यार को मैं किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकती। जी के खजावारा हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं, और नसरुल्ला सोहन का हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, सुचंदा रॉय अनुष्का की तरफ से उनके हस्बैंड केविन के लिए, और लापेहुक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं लीजा की तरफ से, और निरेका का हम वेलकम करते हैं हमारे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। शैला बाबू राम नमस्कार, नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा, और दीपक शिपाली हमारे साथ है, तो चलिए यहाँ रोजिल से हमें सुन रहे हैं, एंजॉय करें हमारे इस प्रोग्राम का अगला गाना।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
1: श्यामा महरानी जी का स्वागत करते हैं, कहते हैं गरम गरम पराठा पकाए हैं, आएंगी
3: ओ जानी तुम
1: आ रहे हैं।

सफर सुहाना सफर। हाँ जी, कुछ लोग रूठे हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, रूठने दो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला गाना होगा आष्टी के लिए, उनके हबी नवीन तेहान, उनके बच्चे हैं ईशान, प्रीति, प्रिशार, तनीषा, साथ में राजेश जुतन, निजाम बहादुर, सुचंदा रॉय। ब्रेक है उनका, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। विहाव शवीना, विहाव शीला सनासी, साथ में यहाँ पर हमारा गाना होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सुचंदा। हाय अरविंद, कैसे हो? तरुण रेडी आपका हम वेलकम करते हैं। श्याम फुलमान आपका भी स्वागत है। भारती नमस्ते। आज रोहित कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक जी, बिल्कुल। शैला बाबूराम आपका स्वागत है। और ए जी नमस्कार, कैसे हो? वीमा पेंसिया। और यहाँ पे गाना होगा आपके लिए मनीता जी, क्या बात है, कहते हैं यहाँ पर रूठना मनाना तो चलता रहेगा, लंच टाइम चल रहा है सुबह का, तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे गाने। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अगला गाना हमें लेके जा रहा है अगला गाना लेके जा रहा है मैं समाचारों की ओर, जो आप सुनेंगे 1 बजे। और आपसे एक बार फिर कहूँगी थैंक यू सो मच। वनुष्का गोदावरी हमारे साथ हैं, जो साथ दे रही हैं, एंड थैंक यू फॉर लविंग इट, थैंक यू फॉर फीलिंग द गुड वाइब्स। हाय पायल, कैसे हो आप? नीता जी नमस्ते। और

बस साथ देते रहिएगा और ऐसे गुनगुनाते रहिएगा। हमारे गाने आपके लिए हैं, खास चुनकर लाए हैं। उम्मीद करती हूँ गाने से आपके दिल में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा और मैजिक, यू नो, म्यूज़िक का जो मैजिक होता है, आई फील कि आप लोग भी इसे महसूस कर रहे हैं। सो कीप फीलिंग द मैजिक, कीप द लव इन योर हार्ट एंड कीप स्माइलिंग, कीप सिंगिंग एंड कीप एंजॉइंग द सॉन्ग्स ऑन रेडियो मनोरंजन RM3 वेदिता के साथ।

0: एनजी के लिए जो कि अभी मेट्रो में है, कहते हैं पोटली से कैटरबोन तक जा रहा हूँ और गाने सुनकर मजा आ रहा है. सो थैंक यू सो मच दिया के लिए भी अगला गाना डेडिकेट कर ही देते हैं. चलिए समाचारों की ओर बढ़ने का टाइम भी हो रहा है.
1: Noon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे विधिमा नमस्कार.
2: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार. कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन की शुरुआत हुई. महासभा में नेताओं के पहले ही भाषणों से माहौल टकराव वाला हो गया. ब्राजील और अमेरिका के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे. गाजा और यूक्रेन के मुद्दों पर गहरी असहमति साफ नजर आई. ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं. जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं. डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है. आज सुबह एबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएमएम के नेताओं ने पार्टी की 57वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत कर दी है. मुख्य कार्यक्रम इस रविवार को रिजवी के ऑडिटोरियम में होगा. एमएमएम के नेताओं ने 1969 में पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया. वक्ताओं ने संघर्षों और राजनीतिक परीक्षणों से भरे पार्टी के इतिहास पर भी चर्चा की. ये बड़ा जुटाव इस विषय पर आधारित होगा, कल आज कल कर्तव्य और जिम्मेदारी. और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन के पास एक आवासीय इमारत में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हमलावरों कामाकुटा टाउनशिप में एक घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 14 लोगों पर गोलियां चला दी. इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में चोटों के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
3: You're listening to RM3 Radio Man.

0: अच्छा ये बताओ कि आपने ऐसा कोई काम किया है या किसी का हाथ थाम लिया है?
1: सुहाना सफर
0: दिन के 1:07 हुए हैं। अगला गाना जो है करसी सलोनी दोहाजी, साथ में योगिता एनजे, जो कि ये भी मैंने बोला ना मेट्रो में है, मैं सुन रही हैं, दीनो मोइनी, और साथ में है रेज नीतू राम कलावन, वी हैव दिया, उनके माम बसंती के लिए गाना होगा, रागिनी जी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर रवीना फोंसो हैं फ्रॉम रोड्रिक्स। हेलो पीपल लिसनिंग इन रोड्रिक्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विश्वनाथ प्रयाग, साथ में है देविका अखवाया से आश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाय पिकी गुनो, और साथ में है सानिया, शैला बाबू राम, पूर्णिमा मोनिक, कवि गायत्री, वंशु और वर्षा हमारे साथ हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। एंड यही गाना चलिए हम गंगाराम फैमिली के नाम डेडिकेट करते हैं, और सहेली का बर्थडे है, चलिए उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ये इटली से हैं तो उनको कहेंगे थैंक यू। राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कहते हैं व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, थैंक यू जी, बस यही हम सुनना चाहते हैं कि आपको गाने अच्छे लगे और आप गाना एंजॉय करें। तो अभी के लिए अगला गाना कौन सा है चलिए सुनते हैं, ये हम लता जी की आवाज़ में।

0: चलिए भाई, मेघा तो अपना काम कर चुकी, अब हम भी अपना काम करते हैं।
1: सुहाना सफर,
0: और चलिए सुहाना सफर में यहाँ पर बबीता बंधु हमारे साथ है। नमस्कार, वी हैव अमीशु एंड लेशनी महाराज। हेलो जी, कैसे हो? स्वागत है आपका। और यहाँ पर चिंता था चिता चिता राउडी राठौर, नो डिया, हम नए गाने नहीं चलाते, बस पुराने ओल्ड सॉन्ग चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चलिए हरे कृष्णा आपको वनुष्का। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए, और कुणाल को कहेंगे नमस्कार स्वागत, संध्या का वेलकम है, और अवनीश को भी हम कहेंगे वेलकम। यहाँ पर हमारे साथ हैं नौशाद बुझावना एंड बबीता, हमारे साथ हैं जय यश एंड निवेदी, उनके हस्बैंड मुकेश के लिए गाना मांग रहे हैं जो कि मॉरिशस में हैं, एंड निवेदी एक्चुअली मिलान से हैं और मुकेश अभी अपना हॉलीडे मना रहे हैं जबकि वो वहाँ हैं और ये यहाँ, मैं यहाँ तू वहाँ। हेमा, इंदु, वरुण रामधारी, साथ में याकूब और भी दोस्त हैं, शीला गोपोल, करिश्मा जहागी, सभी साथ दे रहे हैं हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप, कहाँ पे हैं आप, कहाँ से सुन रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपको पता है हमारा टिकटॉक लाइव है, आपको ये भी पता है किस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन RN3
2: RM3 रेडियो।

0: हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम अगर आपको पता है तो आप खुद बता दीजिए आपको पता है ना मैं कहां मिलती हूं
1: सुहाना सफर
0: चलिए तो यहां पर नेक्स्ट गाना होगा हैप्पी बर्थडे विशेस टू चाचा अनिल लक्ष्मणी और यह कोको की तरफ से और साथ में यहां एजे कहते हैं हाय फ्रॉम मिलान हेलो मैम कैसे हो जी नाम तो लिखा नहीं आपने लेकिन थैंक यू सो मच और यहां पे गाना होगा फॉर चांदनी शिमला बिजादर जी नमस्कार कैसी हैं आप दीप्ति आ गई हैं हमारे साथ सबिता रुकाया फ्रॉम लंदन शबीना है रोजिल से प्रदीप सराफुल हैं उनके वाइफ के लिए गाना होगा बबीता बंधु कहती हूँ मैं वाकवा से ओके रोशनी ने गाना मांगा उनके हस्बैंड सूरज के लिए और आयशा को क्रिश का गाना क्रिश को तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना वो तो बहुत ऊपर ऊपर उठता है मिलेगा तभी तो उसका गाना मैं चला पाऊंगी फिलहाल आप पुराने गाने का प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन गीतों को एंजॉय करते रहिए मैं वेदिता आपके साथ हूँ और अगला गाना अगर किसी को डेडिकेट करना है तो प्लीज़ लेट मी नो

0: सुहाना सफर।
1: चलिए निरूर शाह पैतोप के लिए डेडिकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला गाना। हमारे साथ है नेहा फ्रॉम बर्न में, अब्दुल रिशाद, मालिनी रामलेखा और मोहिनी है फ्रॉम मोहताबा, वीना जी साथ में है। सुरेश कुमार रघु जी का स्वागत करते हैं, वेलकम क्वीन, कल्याणी हरी, शिनाज गनौरी, चंगा ब्रोयन, साथ में नंदा मेकन भी हमारे साथ हैं। प्रतीक्षा आपका मैसेज आया, थैंक यू। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना कविता दुलीप के लिए होगा और लामाबा क्वासी कोको हमारे साथ है। सुल्ताना कंदाई, इतने दिनों के बाद याद किया, लेकिन याद किया ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एजे जो हैं खाना वाना बना रहे हैं, कुकिंग हो रहा है उनका और साथ में गाने भी सुन रहे हैं, आज घर पर है तो बहुत अच्छी बात है। हाय रोशन, वेलकम, स्वागत है आपका। यहाँ पर श्यामा पैदा ताली हमारे साथ हैं, सेंचुरिया दुतमौसी, गाना उनके हस्बैंड सुवेन के नाम जाएगा। एंड पास्कल नमस्ते आपको, एंड साथ ही साथ यहाँ पर शानन के लिए गाना हम चलाएंगे उनके सभी दोस्त के लिए। लीना नमस्कार, रोबी रमेसर फ्रॉम सुरीनाम वेलकम, राजेश द साइन वेलकम है, एंड परी है फॉरेस्ट साइड से कहती है हरे कृष्णा।
2: ओरियल फ्री रेडियो रेडियो रेडियो
1: ये गाना हम अमर सोनू के नाम भी डेडिकेट करेंगे जो अभी भी हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े हैं। स्वागत है आपका।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: गाना तो एकदम ब्यूटीफुल था, बहुत ही खूबसूरत ये गाना था, हर जाए फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज में गाना। अब हम डेडिकेट करेंगे भवानी सिंह ग्रिबर के नाम, थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शन। और साथ में साधना अमर, आरती, प्रवीणा दुर्गा, राज भारती, कविश भकोरी, विनोद, विमला है स्विट्जरलैंड से और वहाँ पे तो सर्दी अब शुरू होने वाली है। राधिया के लिए, रेशमा के लिए, रेशमा रामतुला जो साथ दे रही हैं। नए गाने का प्रोग्राम नहीं है घनश्याम जी, सॉरी, यहाँ पर हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। बबीता हमारे साथ हैं, नेक्स्ट गाना जाएगा किसके लिए, फॉर भैया दादो न चाचा, और साथ में आनंद के लिए जो काम कर रहे हैं। शायद आपका मैसेज जो है वो जब आप लिख रहे हैं तो स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है। ललित मोहन भट्टी, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स, कैसे हो आप, नमस्ते रेखा। चलो तो यहाँ पर बबीता कहती है कि भी तो हम कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, ओहो छाता वाता ले लो, हैट वैट पहन लो, अच्छा रहेगा। रेशमा राम तुला, थैंक यू सो मच, एंड हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, तो नमस्ते विकास जी, कैसे हो आप, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। एंड चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगला गाना जो होगा

हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म का नाम है अब्दुल्ला यहां पर महेश हमारे साथ हैं उनकी वाइफ कीर्ति उनकी बेटी खिशा उनके बेटे कविश और क्यूट कियान के लिए जो सिपुस्तपुल से साथ दे रहे हैं उनके नाम चलाते हैं चलिए चलिए सुनते हैं हम ये खूबसूरत सा गाना रफी साहब की आवाज़ में

0: भाई हमने भी बहुत कोशिश की चांद से बात करने की, लेकिन वो रिप्लाई करते नहीं हैं, और एलियन से भी हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, होते नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपने लिसनर्स के साथ खुश हैं और वो भी हमारे साथ टिकटॉक पे लाइव है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा और दुनिया भर में ढिंढोड़ा, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है कभी कभी, हम जिनको ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे आसपास भी होते हैं, बस नज़र होनी चाहिए सही लोगों को पहचानने की। चलिए जी, यहाँ पर सुनीता बुदन जी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करी हैं, तो उनको कहेंगे थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा, एंड यहाँ पर अगला गाना, मेरे बेटे का बर्थडे था 18 को, अच्छा चला गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनको। और नेक्स्ट गाना उनके लिए, हे मारिकाय नमस्कार जी, कैसे हो? थैंक यू जी, विमला पाडू आपकी मामा माला ब्रितानिया में सुन रही हैं, उनके लिए। और बेनाम फिल्म का गाना, वैसे मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी एक और गाना है, मेरे ख्याल से विकास जी उस गाने को आप बहुत पसंद करेंगे, तो लेट मी प्ले दैट सॉन्ग एंड फिर डिसाइड करते हैं कि आपको वो सुनना है या ये चलेगा। एंड विमला कहती है आज उनके बेटे का बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे। किरित ब्रह्मभट आपका स्वागत है, मालिनी बिसराम नमस्कार, शैला बाबूराम स्वागत है, निशा कौतिक और यहाँ पर मामी उपेगा, ओके आपका भी स्वागत है, रोशनी जी थैंक यू, करुणा भोला आपका भी, रीता गोकुल इमरित नमस्कार। चलिए यहाँ पर गाना होगा नीलम के लिए जो जर्मनी से साथ दे रही हैं, काफ़ी दूर है लेकिन चलो याद किया उन्होंने। संजीव संध्या और सिद्धार्थ के लिए, नायक फैमिली के लिए जो साथ दे रहे हैं उनके लिए गाना होगा। एंड नेक्स्ट गाना होगा फॉर अभिषेक जो साथ दे रहे हैं हमारे, तो आप कहाँ से सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, गीतों के सिलेक्शन में शामिल हैं। अभी हमारा ये अगला गाना किशोर दा के जितने भी फैंस हैं उनके नाम।

अपने प्यार के सपने सच हुए। चलिए आपके प्यार के सपने सच हो जाए यही विश करते हैं। और इसी के साथ अगला गाना रुसीदा विजय के नाम और साथ में अमीना जनित न्यूजीलैंड से रजनीश साथ दे रहे हैं। तीशा का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वी हैव मिली, दीपक अदबी, सलीमा मिर्जा, किरण, रेखा मंदराम और साथ में केबी मधुबाला जो कि साथ दे रहे हैं। और कविता दुलीप कह रहे हैं कि मैं आपको सुन रही हूँ कौची मिली तेज से। एंड वी हैव गीतन, चलिए तो यहाँ पर गाना आपके लिए भी होगा। साथ में यहाँ पर नाजियाना है, सलीमा बीमार थी तो गेट वेल सून। और यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं तनवीर खालिद के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे। एंड बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं लिखा, प्लीज़ मैसेज भेजो तो नाम भी लिखो ना। डॉक्टर इनायत है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हेलो जी कैसे हो, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे शो में।

चलिए मुझे लगता है कि इस गाने के साथ अभी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे. अंजी अमुगम के लिए गाना हम करेंगे, आना के लिए जो साथ दे रही है. हेलो आना, हाउ आर यू? एंड ऑफ कोर्स एक्वायर से श्वेता साथ दे रही है, उनके नाम

0: किस्मत की बाजी की बात करें, यहाँ पर हम वक्त की बात करते हैं, तो यहाँ जाने का भी टाइम हो रहा है। यहाँ पे डीजी फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, नमस्कार जनित सैन की, थैंक यू सो मच। एंड दिया को भी हम कहेंगे थैंक यू, बेबो थैंक यू सो मच, आरती एंड माधुरी, यहाँ पर टीनू हमारे साथ हैं, हेलो राधा, राधे राधे आपको। चलो साहिल जाने का टाइम हो गया है, एंड लव दिस ट्यून्स, थैंक यू सो मच। बस आपसे मुलाकात कल करेंगे, भूलिएगा नहीं 12 बजे ब्यूटीफुल फ्रेंड आरफा के लिए, आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बी की तरफ से। एंड मिली के लिए भी गाना होगा रॉक्स, थैंक यू सो मच। बबीता बुला की नमस्ते, परी स्वागत आपका एक बार फिर, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एंड अशोक जी आपको भी कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी कलीग्स के लिए जो काम कर रहे हैं। एंड मलेशिया से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी कहेंगे थैंक यू सो मच। रोशनी एंड नमस्कार चंद्र आपको, हमने बस आपका पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तशरीन का भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में।
1: अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो।
0: ये गाना एके की तरफ से, उनके बेस्ट जूबी के नाम। और चलिए चलते हैं, अब फिर मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।
1: दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किस महदम में यहाँ ठहर जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से प्यार नहीं हम।
0: चलिए इसी के साथ आशा जानू के लिए, उनकी मम्मी कुमारी और उनके पूरी जानू फैमिली के लिए गाना होगा।

0: Bow.
1: ये सोए रातों में छिप छिप के क्या गुल खिलाए, जो देखें वो जाने ये क्या कमाल कर जाए।
2: ये सोए सोए रातों में छिप छिप के क्या गुल खिलाए।
3: टाइम चेक 2 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। आपको नमस्कार।
4: नमस्कार बरी, सभी को नमस्कार। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन की शुरुआत हुई। महासभा में नेताओं के पहले ही भाषणों से माहौल टकराव वाला हो गया। ब्राजील और अमेरिका के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। गाजा और यूक्रेन के मुद्दों पर गहरी असहमति साफ नजर आई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। आज सुबह बेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएमएम के नेताओं ने पार्टी की 57वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत कर दी है। मुख्य कार्यक्रम इस रविवार को रिजवी के ऑडिटोरियम में होगा। एमएमएम के नेताओं ने 1969 में पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वक्ताओं ने संघर्षों और राजनीतिक परीक्षणों से भरे पार्टी के इतिहास पर भी चर्चा की। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में शीर्ष ईरानी और अमरीकी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है, और उसी दिन अमरीकी नेता ने कहा कि यदि संघर्ष का समाधान नहीं हुआ तो वो इस्लामिक गणराज्य को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। जून में हुए संघर्ष विराम के टूटने के बाद पहली बार हुई इस बैठक में कोई सफलता हासिल होने की खबर नहीं है। कतर की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थी। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
5: Your news on NBC Play and NBC.mu.
6: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
5: RM3 Radio.

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमे अरविंद, साथ में हमने के तकनीकी सहयोगी संजू, हमी संगे हवन जन्मे करेला धरोहर के सरोवर कार्यक्रम जो न आप हर सप्ताह सुनेला ई बखत एक घंटा के प्रोग्राम। ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी विभाग के मिला जुला सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा। एकर में कोशिश ई है कि भोजपुरी से संबंधित कोनो बात या फिर कोनो कहानी, कोनो कथा या फिर थोड़ा बहुत लोग के भोजपुरी सिखाए के और भोजपुरी के दुनिया में कौन सी होवत बा ई सब तो लोग के बते ले आओ। अब जा ऐसे अभी तैयारी होवत बा जोर शोर से, कहे कि 2 नवंबर के अभी आई जो हमी के अप्रवासी दिवस कब्जा बोले उही दिन 1834 में भोजपुरी के लेके बहुत कुछ आयोजन होत बा। और आज हम देखते नहीं अभी फेसबुक में कला एवं संस्कृति मंत्रालय देने से अलग अलग देश के अलग अलग कोना में अलग अलग चीज सिखावल जाला, जैसे गीत गाय के कोनो तबला ई सब। तो हो जा पर हम ई भी देखनी कि वो लोग भोजपुरी गीत गवाए यानी गीत गवाए के कूदवत हुन जा। तो ये बहुत बड़ा बात है, ये अलग अलग जगह पर होत बा। आप भी सब जाके सीखे तनिकुन हो जा परी कहाँ कहाँ पर ही हो, तो हम देखनी देश के अलग अलग कोना में चाहे वो हमारे हाथ में लगी तो वहां है कबा है कबा। तो सबसे पहले पायुट जी रहेला पायुट तो हो जा परी गीत गवाई सिखावल जात बा। फिर प्लेन दे पापा के जो मल्टी कॉम्प्लेक्स वाल रोड बा हो जो परी गीत गवाई सिखावल जात बा। और बेले रिवियसेस के जो न्यू एजुकेशनल कॉलेज बा हो जो परी गीत गवाई सिखावल जात बा। और पॉइंट कानो मेबर यानी जो ओपन एयर थिएटर बा हो जो परी गीत गवाई। तो देश के चार गो कोना में संजू चार गो कोना में गीत गवाई सिखावल जात बा। ई बोलल जात बा कि भोजपुरी गीत गवाई कितना लोकप्रियता ले ले बा मॉरिशस में और दुनिया भर में तो जन्मे करेला ई यूनेस्को

द्वारा एक मान्यता प्राप्त होलबा तो आप ऐसा नहीं कि खाली हम के वृद्ध लोग दादी चाची लोग जो लोग घरे रहेलन जा लोग जाके सीखन जा आजकल नौजवान लोग भी सीखत हुन जा और संजो आप देख लो शादी उदी में आजकल उ दिन हम एगो शादी में गर नी तब जो भोजपुरी के गीत है ऊपर छावन हो माटी कोराय हो सुनत है तो थोड़ा घड़ी में जब दुल्हा आए लगल तो जो दुल्हा वाला तो गीत गावे लन जाना दुल्हा के स्वागत करे के तनके बुझाल गीतवा तो तनको नवा बुझाता कि कब खड़ा होके देखा था है तो दुगो जवान लड़की लोग ये गीत गावत बन जा यानी वो लोग हम सोचले रहनी ये सीडी में चलत बा तो देखें के बहुत अच्छा लगल और दुगो जन नौजवान लड़की लोग होन जा छोकरी लोग होन जा लोग के बधाई भी दे दी वो लोग बोलन जा और हो जा से हाली हाली जाथलन जा काहे कि दूसर शादी में जाए के बा तो देखा है जो भोजपुरी गीत गवाए बा कितना लोकप्रियता ले लेबा कि आज नौजवान लोग भी अगर में रुचि दिखावत बा तो लोग के एगो दादा किस बोला जा एगो आज विका तनिकुन ओकर में एक जना हमके बोलक यूनिवर्सिटी भी जाला तो तनिकुन पैसा कमाए के एगो जरिया होगल बा और हमी के ई संस्कृति के आगे बढ़ाई के एगो माध्यम भी है तो ये बहुत अच्छा लगल तो हमी के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में यही कोशिश रहेला कि भोजपुरी के महत्व भोजपुरी से जुड़ल जितना कुछ बा एकर बारे में तो लोग के जानकारी दे के तो आज बात से कार्यक्रम के शुरू करनी जा एगो गीत सुनब जा फिर आगे तनिकुन और कुछ लिप जा।

0: तो चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा। वैसे ये सब शादी ब्याह के गीत जब सुनी रह जा तो अंके अभी संजू बोलक इखला हेजा परी एगो दादी आ रहा बहुत जानकार हवन त्रियोली से। कौन नाम हुनकर संजू? हाँ दादी दुर्गा प्रसाद जय हम के सहयोगी जय उनकर से बात कर ले रहन और जब सुनत है जाते कर में ढेर कुछ हम के बोलन खास तौर पर पहले लोग कैसे गीत इस सब भोजपुरी गीत गवाई के गीत सीखत लन जा। अभी तक जैसे शुरू में तो लोग के बोलनी सरकार देने से मौका देवल जात बा देश के अलग अलग जगह में अब ये लोग कैसे सीख लन जा एक बहुत अच्छा लग लगे जान के ये लोग कैसे इस सब गीत सीख ले जा और सगब जा बोले सब याद कर ले जा कंठस्थ कर ले जा। सुना
1: पहले के लाभी दूसरा रहल ना पहले तो सब कोई दादी लोग गीत गावे जाए तो हमने लुक लुक के जात अली सा दुआ नहीं रहल कुमारी बन करके गीत गवात रहल तो लुक के जात अली सा गीत गावे तो सब बुझाए एगो कासेद बा हमार लगे सब रमास ले बतली सब गीत जितना हुए शुरू में तो हुए अब हमार दादी लोग जब जाय लगल गीत गाय तो हम जाय लगली तो जब काम करे लगली तो हमर बीगो रहल तो हमरा फैसिलिटी मिलल बहुत तो हम हुआ से निकल के गैली काशी हमर दादी रहल एगो मदाम सेवागतवे रहल हमर दादी हमार दादी के गोतनी ओकर से हम सब हम तोरा कितना बोली हम कितना सीखली बहुत सीखली तो हम उ रहल आर ई सरस्वती माँ के देन है।

0: सबके कंठ में नहीं बसेलन तोहरा चाला ओके बसाई के हम तो सपना में गीत लिख ले गई ले हैं और उठ के हालिसन गीत लिख दे ले हैं सपना में ऐसे
1: कौन कौन से गीत रहल आगे के
0: आगे के आगे के अथी रहल है संझा आगे 15 गो गीत जब ले नहीं गवाई तब ले तू झूमर नहीं गई बा 15 गो गीत गई बा 5 गो देवता देवी के संझा और 5 गो महादेव के और 5 गो शादी के एक मजे गो नॉर्मल है ये गो नॉर्मल इधर लग मजे आदमी नहीं है सच पे हो पस की इतना तनी सन बा आवरी बोला ऐसे हुआ था पहले और अभी नहीं अभी दूसर बा हमरा सब हमर गीत हमर गीत हम जाने ले तोरा एगो बात बोलिए हम हमर गीत हमरा बुझाला मन लैका है काजी निकाह ऐसे लगे ला हमरा कि हमर लैका है ऐसे हम ओके समेट के रखिला निबन से ऐसे करीला हाँ।
1: गीत गवाई में माटी और धरती बंधाई के महत्व का है
0: ओ आगे से आदि अंत से हो के आलबा धरती माँ के पूजा करबा आगे तब न सकबा ओकर में नाचे ओकर धरती बांधा ओकर पूजा कर पहले के धरती बांधा दूसर रहल अभी के दूसर बा
1: एगो गए बा धरती बंधाई के
0: धरती के गोड़ा तोहर लागिला धरती हो मैया गोड़ा तोहर लागिला धरती हो मैया बीता भर जगैया हमारो के दान गे माय बीता भर जगैया हमारो के दान गे तार बांधो धरती ऊपर या समान गे तार बांधो धरती ऊपर या समान गे मैं घूमा फिरी बांधिला देवाया सतान गे मैं घूमा फिरी बांधिल देवाया सतान गे
1: तो चाची गीत गवाए में सबसे आगे कौन गीत गवाना
0: सबसे आगे चाहे गाय के संझा संझा गाय के तब देवता के गीत पांच गो देव महादेव के पांच गो तब पांच गो शादी के इतनी सन ओकर थी इतने से बहुत कुछ जस्ती गाई तब इतना ओकर है ओकर सिस्टम है यही ओकर चाहे गाय के इतना एक और गासी ना
1: ओके तो चलो संझा से शुरू कर अब सर
0: सांझा भइले सांझा घर

से के देबो संझा सोने के सिंहासन, बाई से के देबो संझा सोने के सिंहासन। अमृता भोजन बनायो जी, अमृता

बैसे के देबो संजा सोने के सिंहासन, बैसे के देबो संजा सोने के सिंहासन, अमृता भोजना बनायो जी, अमृता भोजना बनायो जी।

लेला न भैया सबे हो भैया घर में से निकालेला भैया सबे हो भैया हमारा सांझा मनायो जी हमारा सांझा मनायो जी बैसे के देबो संझा सोने के सिंहासन बैसे के देबो संझा सोने

0: RM3 Radio. Radio.
1: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
2: तो जैसे सुनत हुआ भी धरोहर के सरोवर कार्यक्रम चलत बा। ये कार्यक्रम जो महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा। आज अभी दादी के सुन ल। वैसे ही कार्यक्रम में जनबे करेला हमनी भोजपुरी के बारे में बताए ला जा, भोजपुरी सिखाए ला जा। और भोजपुरी के जन ई परंपरा बा जो बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है, गीत गवाए ई मॉरिशस में सिखावल जात बा। शुरू में तो लोग के बोलनी, अभी अंत में फिर से तो लोग के याद दिलाव कि कहां कहां पर सिखावल जात बा। पर ई दादी जो नहीं जा ऐलन, हमके संजू बोला था वन कि जब रिकॉर्डिंग करत हलन, संजू ही रिकॉर्डिंग कर ले हुआ, दादी के सामने न कोनो मोबाइल न कोनो पेपर कोनो कुछ नहीं, थला सब अपन दिमाग में, सब अपन दिमाग में। और कैसे सिखलन हमी के बोलन कि उनकर दादी जब जाथलन गीत गवाई में तो छुप छुप के जाके सीखतलन। तो ई देखे परंपरा कैसे, अभी आजकल तो इतना सुविधा हो गल बा, इतना कुछ सीखे के एआई के माध्यम से कोच ने सब करे। तो पर ये लोग सकेला ढेर को ये लोग में पढ़ल लिखल नहीं हुई, पर ई गीत सुन सुन के ये लोग लगलन जगाए। तो वो दादी संगे जो भेंट वार्ता हम के सहयोगी जय गणेश राव सिंह कल रहलन, आगे सुनी जा जा। हम के अभी बोलियन कि आगे कौन चीज होला। तभी शुरू में बोलला कि पहल का जो है संजू कौन गीत गावेलन, एगो सुमिरन शुरू में, एगो सुमिरन नहीं हाँ। तो एकर से पहले जय के पूछला पर वो बोलन धरती पूजा कौन सी है। अब एकर आगे कुछ होला सुना,
3: उनकर बात कौन सी गवाला।
4: अब देवता के गई बा, अब देवता के गई बा, धरती भी नेवा देवता भी ने।

0: हो, ई नेवता है देवता के नेवता दिली सब के घरे अवधपुर जहाँ छोकरा रही तो के अवधपुर, जहाँ लड़की रही तो ओकर जनकपुर, ऐसे ही नेवता दिया आवे के।
1: और इनके बाद
0: इनका बाद महादेव तब है वाला है पांच गो गई बा है देवता के पांच गो, तब पांच गो गई बा महादेव के
1: तब गई बा महादेव के।
0: हाँ

0: महाराज जी
1: कही रहे गो महादेव के
0: महादेव के
1: तो चाची महादेव के गीत के बाद कौन सी कौन गीत रहे
0: अब शादी के गवाई सब शादी के अब शादी के हुई
1: चलो शुरू करा
0: राजा जनक चले गंगा स्नान करे।

शिवाजी के धेनु का उठंगायो जी, गंगा स्नान करके अले राजा जनक अले।

राजा हो एक चिट्ठी नगर में फिरे जी, एक चिट्ठी नगर में फिरे जी, देसा ही देसा के राजा सब आवेला, राजा सब आवेला, बैसे जनक जी के द्वारे जी, लंका से आवेला गर बीरवनवा हो, गर बीरवनवा हो, बैसे लाया

तीना खांडा करेला तीना खांडा हो ताही संगे सीता के बियाह जी ताही संगे सीता के बियाह जी।

उतारे माता यासन बैसावेला यासन बैसावेला दशरथ के कुलाउ जियाला जी दशरथ के कुलाउ जियाला जी तुलसीदास बलुया सचरण।

0: तभी सुनल दादी शिवरानी दुर्गा प्रसाद के त्रियोले के होवन और वो जन्मे के लिए त्रियोले में भोजपुरी के जानकार भोजपुरी के धमी के चाची दादी लोग नानी लोग बहुत निमन से इससे इस संजो के रख ले जा भोजपुरी गीत गवाई तब भोजपुरी सगरो चाहना बोले के काहे नहीं हगे नहीं संजू सगरो चाहना बोले के भोजपुरी सगरो बोलबता ई धला गो न केवल भोजपुरी कोनो भाषा आप क्रियोली भाषा बोले ला हिंदी भाषा बोले ला तेलुगु तमिल मराठी उर्दू चाहेला बतिया की कहे की पर भोजपुरी हमने कार्यक्रम में भोजपुरी के बात कर रहे थे जा कहे की भोजपुरी एगो धरोहर है कार्यक्रमों के नाम है धरोहर के सरोवर तो कहे अंकि संजू बोलक आज दादी के भेंट वार्ता आने के कहे की अब प्रावधान करल जात बात गीत गवाई सिखाई की तो फिर से याद दिला दिला जा कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय देने से जो न अलग अलग इलाका बा हो जा पार्ट टाइम ई सब कु देवल जात बा पायुत में पायुत का त्रिभुवन जो है ओजा पर गीत गवाई के सिखाई के मौका मिले तो प्लेन दीपापाय में भी मल्टी कॉम्प्लेक्स में फिर बिले वेस्टेस न्यू एजुकेशनल कॉलेज में हो जो परी और पॉइंट कानो मेबर्ग में भी तो एक खतेर 12 अक्टूबर से शुरू हुई और आप लोग सग बजा जाके फॉर्म भरे ई पोर्टलुई में हो जा परी जो रंगा नारायण श्रीनिवासन बिल्डिंग बा फिर पोर्टलुई में ही जो बादेन पावेल बिल्डिंग बा और पायुत में प्लेंटी पापाई में पॉइंटस कानो में बिलेरी वीएसएच में जहां पर बोली जा सेर्ज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकुआ में सेंट्रल लिट्रेचर एनिमेशन कल्चरल क्लार्क जितना अलग अलग है जहां पर जाके आप लोग सब बजा ई फॉर्म भरे और ई फॉर्म भरे के आखिरी तारीख है बुधवार 7 अक्टूबर 2026 तो भोजपुरी गीत सुना भोजपुरी गीत गाय के सीखा
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: अब बुझावल के समय चलाल बा देख संजू हंसत बा आज आज उनकर तन कुन टेस्टिंग कर देखब जा कहां ले कौन सी याद कर ढेर नहीं एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो बाज ठीक पहलका है ई कर ले ही जा और ई सगरो बा मॉरिशस में देख बता सगरो बा निमन से सुना एक चिड़ैया लट ओकर पंख बजे पट एक चिड़ैया लट ओकर पंख बजे पट ओकर खड़ली उजार ओकर मांस मजेदार अभी ओकर ओकर समय बा अभी कौन चीज संजू बोला गन्ना हा गन्ना ओकर खल्ली उजार धला ओकर जोन हो जोन किसे बोले जा दांत से छिलबत निकलबा ओकर त ओकर मांस जोन हब अंदर मजेदार मजेदार माने खूब मीठा है कबो खैले हुआ गन्ना मुंह से छिलके हां आजकल लड़का लोग बोले जा हम दांत निमन नहीं बापरेला दांतिस लगे जाए कि हो समय दांतिस के नाम हुए नहीं लोग नहीं जा हो धला गन्ना के जब फसल होला वो गन्ना जाके खेत में तूर के गोर से तूर हुआ है गोर से ठेवना से ऐसे तूर के ओकरा खैबा दांत से छिल के तो दांत और मजबूत होला तो ई एगो बुझावल रहल हई ला देखी ला जा एगो पैर हिया एगो पैर कलकत्ता एगो पैर हिया एगो पैर कलकत्ता ओकर फर पर ओकर फर के ऊपर पत्ता एक पैर हिया एक पैर कलकत्ता ओकर फर के ऊपर पत्ता ओकर फर के ऊपर पत्ता धला जोन फरेला ओकर ऊपर पत्ता जनाना अनानास ओकर फर के ऊपर पत्ता पर है एगो पैर हिया एगो पैर कलकत्ता ई काहे बोललक हाई हम सोचत है हमर देखे मैं कब जनाना पौता ला तैसे इसे दिन बस एक ओकर नीचे का एक पत्तवा से एक एगो है बल जला गो हो बल जला गो है बल ऐसे तब बीच में से हो अनानास निकले ला तो ओकर ऊपर को तन को पत्ता आ रोला हो एक हाथ बोता धला एक पैर हिया एक बगल एक पैर हुआ और ओकर फर के ऊपर पत्ता त जनना हो गीतवा पाना जनना ऐसा छोकरी हाँ हई ला संजू जाने ला इस शादी में जाला ना तब एक खाला ही ढेर एगो रुमाल बा रुमाल जाने ना मुसवार एगो रुमाल बा उ पानी में कब्बो नहीं भिंजेला एगो रुमाल बा उ पानी में कब्बो नहीं भिंजेला कुछ है कच्चू के पत्ता हाँ कच्चू के पत्ता पर इतना पर कोई की कबो बोले जाए तो कच्चू के पत्ता है किकरा बोले जाए तो कच्चू के पत्ता है अभी जितना कोई सुनोत मन जा भी सोचे जा कोई के जब बोलबा तू तक कच्चू के पत्ता हो भी एक अलग अलग अर्थ सकी रहे अलग अलग अर्थ

0: थमर देखे मैं कच्चू के पत्ता में पानी दलवा तो गिर जला तो धलक कोई के कोनो बात भूल बा तो उकर, उकर पेट में नहीं पचेला समझ ले ना नारद या फिर कच्चू के पत्ता ई भी सकेला होई कि कहूं उकर कबो इधर कबो उधर कच्चू के पत्ता है ना धला आज बोली हर चीजवा अच्छा बा काल बोली नहीं अच्छा बा हो एक रोबला कच्चू के पत्ता हैला जहां जहां जाइला हमर संगे संगे आवेला जहां जहां जाइला हमर संगे संगे आवेला संजू बुल्ला खंकी भोजपुरी का बोले जा प से शुरू होला परचाही परछाई परछाई अब एक एकरो भी अलग अर्थ चलावेला कोई के बोलबा ई तो ओकर परछाई है ई तो ओकर परछाई है कोई के बोलबा ई ओकर परछाई है तो कुछ बोलला हाँ ओकर हमेशा ओकरे ओकरे संगे संगे रहला ओकर जिगरी दोस्त धला एगो एगो कबो कर ओकर साथ नहीं छोड़ेला जैसे परछाई हमी के साथ नहीं छोड़ेला कोई कोई के साथ नहीं छोई छोड़ी तो ओकरा बोला परछाई हैला तीन गो अक्षर के हमर नाम हैला तो कुन कठिन बा तीन गो अक्षर के हमर नाम उल्टा सीधा सब एक समान एगो ऐसा शब्द बा ओकरा उल्टा करके लिख बा उल्टा सीधा एक ही है चम्मच चम्मच च म च नहीं च आधा म च ओकरा उल्टा देबा तो कुछ हो जाए चम्मच निकला तीन गो अक्षर के हमर नाम उल्टा सीधा सब एक समान तो आज के हमी के ई बुझावल के कक्षा समाप्त हो लैका लोग संजू हमी के आज के ई कक्षा में रहलन बहुत धन्यवाद तो चला चलत ई कार्यक्रम के समापन करते समय हमनी हमनी के सहयोगी जय गणेश के सुनब जा हाल ही में उनका नमो देखा जय गणेश अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी में नहीं जा और गणेश चतुर्थी पर भोजपुरी पर को गीत बन रहल सचिता राम जी डॉक्टर सचिता राम जी ने गीत लिखले रहन बहुत समय पहले के है ई जोन धुन बा सुनबा तोहरा पता चला कि कितना समय पहले के ई गीत है तो चला भगवान गणेश के याद करके ई कार्यक्रम के समाप्ति करब जा संजू के धन्यवाद हमी के साथ दिलन फिर मिलब जाए गुनावा कार्यक्रम संगे तब तक नमस्ते
1: भोजपुरी सांस्कृतिक परंपरा में सुमिरन या मंगलाचरण के बहुत महत्व बाटे विवाह गीत धार्मिक गीत लोक नाट्य और अन्य सांस्कृतिक अवसरन पर देवी देवता के स्मरण से कार्यक्रम की शुरुआत करे के परंपरा रहल बा मॉरिशस में भी गिरमित्या पूर्वज अपन साथ उत्तर भारत के धार्मिक और लोक सांस्कृतिक परंपरा लेके ऐलन जा समय के साथ ई परंपरा मॉरिशन भोजपुरी के सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में समाहित हो गए गणेश सुमिरन जैसन गीत ई निरंतरता के उदाहरण मानल जाला महात्मा गांधी संस्थान के अभिषेक एल्बम में डॉक्टर सचिता रामदीन द्वारा प्रस्तुत ई गणेश सुमिरन धार्मिक संगीत के माध्यम से भोजपुरी भाषा भक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ल बा गीत के सरल भाषा और बात के दिखावेला कि धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति लोक भाषा में कैसे सहज और प्रभावशाली ढंग से हो जाला विशेष रूप से गणेश जी के पहले सुमिरन के विचार गीत के संरचना और संदेश दोनों के आधार बन जाला अर्थात हर शुभ प्रयास से पहले ईश्वर के स्मरण और सफलता खातिर आशीर्वाद की प्रार्थना ई छोटा गीत अपन आकार से नहीं अधिक गहरा सांस्कृतिक अर्थ रखेला इमे भक्ति विनम्रता मंगल कामना सामुदायिक विश्वास और परंपरा की निरंतरता एक साथ दिखाई देला गणेश के स्मरण के

माध्यम से गीत ई विश्वास व्यक्त करेला कि मनुष्य के कोनो नवा प्रयास केवल व्यक्तिगत शक्ति से ना बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद और कृपा से भी सफल होके के कामना रखेला। ई गणेश सुमिरन मौर्शन भोजपुरी धार्मिक परंपरा में शुभारंभ विघ्न निवारण और मंगल कामना के एगो सुंदर लोकभाषिक अभिव्यक्ति है, जहां गणनायक के पहले स्मरण करके हर नया प्रयास के सफल खातिर आशीर्वाद मांगल गैल बा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। त्यो लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद। नमस्ते।

0: दिमाग आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को नमस्कार संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने एआई का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है ब्रिटेन ने अमरीका के साथ एआई के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है जबकि फ्रांस ने इस संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है ये महासभा मोदी पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही बुधवार को पोर्ट लुई में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने मारी जेट कैथरीन से मुलाकात की जो पुलिस बल की एक नई भर्ती है जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार कर रही है आज सुबह इबेन में एमएमएम ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया दल के सदस्य एमएमएम की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रेजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से एमएमएम को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया एमएसएम का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है ये एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेने के लिए बनाई गई है जिसने खुद 2024 में इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन की जगह ली थी एमएसएम के सांसद जूली शोंगो ने नेशनल क्राइम एजेंसी को स्थापित करने वाले विधेयक का विरोध किया है उन्होंने विशेष से इस भावी एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाया है विदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने से ठीक पहले भारत के कई स्थानों पर मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 24 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है और मेक्सिको के तट पर पोलो तूफान तेजी से विकराल रूप लेते हुए प्रशांत महासागर में इस मौसम के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: 23 सितंबर बुधवार का दिन, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और इसका सीधा प्रसारण अभी एमबीसी के तीसरे चैनल पर भी आप देख पा रहे हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, अभी से लेकर बिल्कुल एक घंटे के इस सफर में। आज हम बात करेंगे हृदय पर। बिल्कुल 29 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, और इसी के संदर्भ में, इसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी, जो कि एक कार्डियक सर्जन है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: और बिल्कुल फ्रांस से आए हुए डॉक्टर जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, हृदय एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। जब से जीते हैं, जब से धरती पर आते हैं, तब से लेकर, जब से हम कह सकते हैं कि हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हृदय के फंक्शंस पर, हृदय कैसे काम करता है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आज हमारे देश में नहीं पर पूरे विश्व भर में हृदय को लेकर संबंधित है, आज डॉक्टर जी से जानने का मौका मिलेगा। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो फंक्शन कैसे करता है?
1: हृदय एक ऐसा मशीन है जिसमें बहुत सारे, उस मशीन में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि उसका एक मेजर पार्ट जो है, जो वो मसल होता है जो पंप का काम करता है, और उस पंप के द्वारा हम पूरे शरीर को खून दे पाते हैं, ऑक्सीजनेटेड खून दे पाते हैं। तो एक मसल का काम होता है। दूसरा काम तो जो है वो वाल्व्स का होता है, यानी कि खून को एक ही दिशा में बहना चाहिए, ना कि
0: उल्टी
1: पीछे जाए, उल्टी दिशा में जाए।

0: क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे हृदय के लिए नहीं, हमारे फेफड़े के पूरे शरीर के लिए. और जो तीसरा अंग होता है वो हमारे कोरोनरीज होते हैं, जो जो भी आर्टरीज हमारे उस मसल में जाता है उनको खून देता है. तो जब भी ब्लॉकेज होता है उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो जाता है. और एक और अंग भी होता है जो हम उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो है एक प्रॉब्लम है जो है हमारे दिल में. जैसे कि आप सीबी में बिजली लाते हैं तो सीबी से लेके आप यहाँ तक बिजली लाते हैं, तो हमारे दिल में भी तार होते हैं जो वहाँ बिजली लाते हैं और उससे हमारे हृदय में धड़कन हो जाता है.
1: अच्छा,
0: ये धड़कन जो है वो रेगुलर होता है इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं. जब ये इरेगुलर हो जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाता है, ये इन तारों का प्रॉब्लम होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो हम ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है.
1: बिल्कुल.
0: तो इस एक अंग में बहुत सारे अंग होते हैं और हम उसको हमें उसको समझना चाहिए और पॉपुलेशन को भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो हैं, जो दिल का प्रॉब्लम होता है, ये कोरोनरीज का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं होता, ये मसल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वाल्व्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है और जो हमारे कंडक्शन है जैसे कि बिजली के तार होते हैं उनका भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं.
1: बिल्कुल. तो, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है ये. और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं हृदय के बारे में क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आए दिन हम हाइपरटेंशन पर, हार्ट अटैक पर, कार्डियक प्रॉब्लम पर बात तो करते आए हैं, पर हमारा हृदय कैसा होता है दिखने में आप इमेजिन कर सकते हैं. और इसी के साथ साथ ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि दिल का धड़कना किस तरह से होना चाहिए. अगर आपको खुद एक महसूस होता है कि आपकी धड़कनें जो है वो अगर इरेगुलर हो रही हैं तो उसे कैसे पहचाना जाए, आज चलिए जानते हैं. डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं कि दिल पूरा दिन धड़कता है, 2400 घंटे सातों दिन धड़कता है, तो आप बता सकते हैं कि एक दिन में धड़कने कितनी धड़कने होती है, हमारा दिल कितनी बार धड़कता है?
0: इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि मनुष्य जो है जब वो जन्म लेता है तो वो बच्चा होता है और वो बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है. जब वो बच्चा होता है तो उसकी गति, उसकी हृदय गति बहुत ज़्यादा तेज होती है.
1: बिल्कुल.
0: तो हमें 130-140 तक ये जा सकता है क्योंकि उसका पंप का फंक्शन ऐसा होता है. और जब हम बड़ा हो जाते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है. तो ऐसे बोलना कि एक दिन में वो इतना काम करता है ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: बच्चे की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं.
1: सही.
0: और हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादातर एडल्ट होते हैं तो उनकी नॉर्मल गति ये है 80 बीट्स पर मिनट.
1: अच्छा.
0: अराउंड. तो जैसे कहते हैं हमारे हमारे किताबों में हमने पढ़ा है कि 6200 बीट्स पर मिनट,
1: यानी ये एक नॉर्मल,
0: ये एक हेल्दी हार्ट की गति होती है.
1: हाँ हाँ.
0: जब वो उसके उससे ज्यादा हो जाता है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों ज्यादा हो रहा है. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये नॉर्मल चीज है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अगर आप आराम कर रहे हो,
1: बैठे बैठे ही
0: एक 100 से ज्यादा हो रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है. तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, चेकअप्स करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा हार्ट रिदम ज़्यादा हो रहा है, मैं जानता नहीं क्यों हो रहा है.
1: जी.
0: तो ये सब समझना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो डॉक्टर जी, जो हमारी धड़कनें हैं वो कंट्रोल कैसे होती है, मतलब एक कैसे कहते हैं कि उसका एक रिदम होता है, वो रिदम के अनुसार चलती है? और जैसे आजकल देखा गया है कई सारे लोगों का जब रिदम इम्बैलेंस हो जाता है, इरेग्युलर हो जाता है, तब कहीं जाकर उनको पेसमेकर डालने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये पेसमेकर कब डाला जाता है?
0: हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कंडक्शन का सिस्टम है, जो जैसे कि मैंने कहा, मान लिया जाए एक बिजली के तार होते हैं, तो अगर हमारे सेंट्रल प्लांट जो है, हमें पॉपुलेशन को इमेजिन करना चाहिए कि मान लिया जाए कि वहाँ पोर्टलिस में है
1: जी,
0: और हमें बिजली को क्यूपिप लाना चाहिए और बीच में या काथोबोन होता है या बुबासा होता
1: बहुत सारी जगह
0: है, ये कनेक्शन हो रहे हैं. तो ये तीन महत्वपूर्ण कनेक्शन होते हैं जैसे कि पोर्टलिस, काथोबोन और क्यूपिप में
1: जी.
0: तो ये जो तार आ रहे हैं, एक

0: गति से आ रहे हैं।
1: सही।
0: तो अगर पोर्टलिस में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली क्यूपी में कैथोड में नहीं आ जाएगा।
1: सही।
0: लेकिन अगर पोर्टलिस का अच्छा चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो कैथोड में है,
1: हाँ,
0: तो क्यूपी नहीं आ जाएगा लेकिन पोर्टलिस का चल रहा होगा।
1: बिल्कुल।
0: मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल इशू है मेडिकल टर्म्स की, और डॉक्टर को समझना चाहिए कि किस लेवल पर प्रॉब्लम हो रहा है,
1: कहाँ पर हो रही है।
0: अगर सेंट्रल पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ, हमें देखना चाहिए क्या एक पेसमेकर डालना चाहिए, क्योंकि ये दवाई से या कुछ भी लेने से ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे भाग में प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं
1: जी,
0: तो हमें देखना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेंट्रल पार्ट तो काम कर रहा है लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे में वाल्व के इश्यूज भी रिवम प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जो भी कोरोनरीज ब्लॉक हो जाते हैं स्पेशली राइट साइड में, जब वो ब्लॉक हो जाए तो हमें ज़्यादातर रिवम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स हमें सीने में दर्द भी होगा और ये सब होगा,
1: जैसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, हाँ, उसके।
0: लेकिन मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये एक मशीन है जिसमें सारे अंग जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें एक सिम्टम को लेना चाहिए और उसे हमें पता चलना चाहिए कि क्या ये एक सिम्टम एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है या और चीज़ भी जो दिल में होते हैं उससे जुड़े हुए।
1: तो इसका डायग्नोस जैसे काफ़ी लंबे प्रोसेस,
0: हाँ,
1: बहुत
0: ये ऐसे में डायग्नोस करना 5 मिनट का काम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो हमें टाइम लेना चाहिए, हमें
1: उसकी हिस्ट्री
0: समझना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री सब कुछ देखना चाहिए, और हमें पेशेंट को भी चेक करना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आर्टरीज के बारे में बता रहे थे, कोरोनरी आर्टरीज, तो ये जो दिल से कनेक्टेड होती है, ये इसका फंक्शन कैसे होता है?
0: देखिए, जो जब ये मसल का काम होता है, जो वो पूरे शरीर में खून देता है
1: जी,
0: तो ये एक पाइप से जाता है, एक मेन पाइप, उसे बोलते हैं एओटा, और उस एओटा में हमारे उसके बिगिनिंग में जब वो हॉट से निकल जाता है तो वहाँ पर हमारे कोरोनरीज उनके जन्म होते हैं। तो ये राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में होता है नॉर्मल इंसान में, क्योंकि कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जब राइट साइड डेवलप नहीं होता या लेफ्ट साइड डेवलप नहीं होता, लेकिन छोटे हैं लेकिन है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या एनाटॉमी अच्छी है कि नॉर्मल है या मॉडिफिकेशन हुआ है नेचुरली, और देखना चाहिए कि ये कोरोनरीज जो हैं किस भाग में जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और अगर वो कोरोनरीज अच्छे हैं तो हमें जैसे कि हम एनजीओ करते हैं उसे देखते हैं कि कैसे कोरोनरीज होते हैं, तो उसमें खून आ जाता है, हमारे एओटा उस बिग ट्यूब से आ जाता है, और ये खून हमारे मसल में आ जाता है। तो क्या होता है, लोगों को समझना चाहिए कि जब ये हार्ट का पंप काम करता है, जब वो पंप हो जाता है और हमें खून देता है, तो कोरोनरीज काम नहीं करती। जब वो रिलैक्स हो जाता है
1: तब
0: ये कोरोनरीज उनको खून मिलता है और वो उन मसल को खून दे पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे पाते हैं, ऑक्सीजन दे पाते हैं। इसे कहते हैं लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होता है।
1: और डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी के धड़कने, क्योंकि कई बार होता है जैसे आपने बताया कि चलिए एक्सरसाइज करता है तो समझ में आता है कि धड़कने तेज हो गई, पर ये धड़कने तेज हो जाना, कई बार एकदम धीमे हो जाना, इसके पीछे कारण क्या होते हैं?
0: देखिए, हमारे पूरे शरीर में, ना कि सिर्फ हमारे हृदय में, पूरे शरीर में मसल्स होते हैं
1: जी।
0: जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम उस पूरे शरीर को मोबिलाइज करते हैं, तो उन सारे मसल्स को, हमारे सारे अंग जो हैं
1: जी,
0: उनका वर्क रेट ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें खून ज़्यादा देना चाहिए, जैसे कि आप हृदय जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, हम आराम कर रहे हैं
1: जी,
0: तो हमारे खून जो है 5 लीटर पर मिनट में जाता है, ताकि एक मिनट में 5 लीटर खून का सर्कुलेशन हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो 5 से ज़्यादा हो जाता है, 6, 7, 8, 20 तक जाता है, 25 तक जा सकता है, तो उसका काम ज़्यादा होता है, और इसीलिए हमारे जो शरीर के मसल्स होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये हृदय ज्यादा

0: का काम करता है। लेकिन जब हम आराम कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्डाइज हैं, ये 5-6 लीटर पर मिनट का काम करता है। लेकिन अगर आपको हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी कि उस हृदय के मसल जो हैं अच्छा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, तो ये जो आप जब 5 लीटर बेस लाइन आप आराम कर रहे हैं तो आपको 5 लीटर पर मिनट होना चाहिए, हार्ट फेलियर में उस 5 लीटर पर मिनट का ये नहीं दे पाता है।
1: ये वो उतना रेशो नहीं होता,
0: उतना रेशो नहीं होता क्योंकि ये मसल ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमें सिम्टम्स आ जाते हैं,
1: धड़कनें कम होने लगती हैं,
0: पैरों में पानी आ जाते हैं, तो हमारे फेफड़ों में भी पानी आ जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि ये क्या ये हार्ट फेलियर है। लेकिन एक वेरिएशन भी होता है, जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं, हाई लेवल एथलीट्स
1: जो स्पोर्ट्समैन होते हैं,
0: उनकी धड़कनें जो हैं जब वो आराम करते हैं वो बहुत लो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: ये बस क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनके शरीर जो डेवलपमेंट होता है वो एक अलग तरह के लेवल में डेवलप होता है। तो आपको 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, उनका जो है वो 40 लगभग का होगा। लेकिन ये अब नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ये सब
1: एकदम से जैसे मतलब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, ये भी कारण हो सकता है।
0: तो ये एक जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि
1: किस व्यक्ति के लिए ये कम क्यों हो रहा है। बिल्कुल,
0: क्या काम करता है, क्या स्पोर्ट्स करता है, क्या खाता है पीता है, तो हमें ये सब एक इंडिविजुअलिटी।
1: तो डॉक्टर जी, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी तो आपने स्पोर्ट्समैन की बात की, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे मॉरिशस में कई सारे ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत हैवी फिजिकल उनका इनपुट रहता है, तो क्या उनके लिए भी ऐसा ही होता है?
0: ये अलग बात है, क्योंकि जब हम हैवी वर्क्स करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो हम स्टैटिक होते हैं, हम खड़े होते हैं, और जैसे कि गन्ने के खेत में जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर उतना ज़्यादा काम नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं चल रहे हैं।
1: जी जी,
0: ये
1: हाथों का काम,
0: हाँ हाथों का काम कर रहे हैं। तो हमारे पूरे सिस्टम में जब हम चलते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन जब हम खड़े होते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ खड़े होते हैं या फिर बैठ रहे हैं, तो इतना सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होता,
1: यानी पैरों का चलने से सर्कुलेशन,
0: क्योंकि हमारे पैरों के नीचे जो भी उसे बोलते हैं इंग्लिश में कशन, तो जब हम उस पे चलते हैं तो हम उस कशन को स्टिमुलेट करते हैं और ये हमारे खून को चलने में ज्यादा हेल्प करता है।
1: तो यानी चलना, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा अच्छा है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा बहुत वॉकिंग करना,
0: क्योंकि एक्सरसाइज ये स्टडीज में भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उनको हार्ट फेलियर होता है, उनको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, मुझे घर में रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना
1: जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसी पर आधार रखती है।
0: ये थोड़ा सा भी एक्सरसाइज जो वो करते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, उनका ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये दवाई का मैं नहीं कह रहा कि ये दवाई छूट जाता है, लेकिन उनके डोजेस कम पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो पोस्टपोन हो सकता है कि आपका जो भी रिस्क है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है।
0: एग्जैक्टली, तो उनके रिस्क भी कम हो जाते हैं और उनको जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होता है।
1: बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं हृदय के फंक्शंस पर, और अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है। हमारे साथ बने रहें, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो हृदय के रोगों को लगकर है, या कोई भी ऐसा सवाल आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर 9:30 बजे के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर। लेते हैं गीत का ब्रेक।

0: की चर्चा कार्यक्रम और हमारे साथ तकनीक पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं कादिया, प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका और रत्नमाला जी हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रही हैं। और बिल्कुल हमारे श्रोताओं से मांग है, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, हृदय के रोगों को लेकर कोई भी ऐसा सवाल है तो अवश्य आज के इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं 4028085 पर। और जैसे ये गाना चला, भाई हृदय में दर्द उठने वाला हर बार प्यार नहीं होता, कई बार ये आपको संकेत देता है कि हो सकता है कि आपको हृदय रोग की कोई ऐसी सिम्टम्स हो रही हैं। और बिल्कुल आज का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से हमारे हृदय को प्रभावित करता है ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, डॉक्टर जी से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, डॉक्टर जी लाइफस्टाइल हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है?
1: हमारे लाइफस्टाइल जो है वो हमारे काम से जुड़े हुए हैं, पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सब आउटसाइड की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, हमारे शरीर के अंदर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, अगर आप बैठे रहते हैं, आप सब कुछ खाते पीते हैं, जो भी कोलेस्टेरॉल की चीज़ें हैं, जो भी होता
0: है, जो भी जंक फूड है, ऑयली,
1: चाहे वो जंक फूड हो या घर का खाना में ज़्यादा तेल डालते हैं, उसका कंसीक्वेंस, उसका जो रिजल्ट है वो सेम होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें जानना चाहिए कि क्यों ये हमें प्रॉब्लम्स देता है। देखिए, हमने कहा था कि हमारे शरीर में खून बहता है, तो ये खून हमारे आर्टरीज में जाता है, चाहे वो कोरोनरीज हो जो हृदय के मसल को देता है, या फिर
0: और कोई भी
1: अंग होता है। तो ये जो खून बह रहा है, अगर उसमें कोलेस्टेरॉल का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है, तो ये एक छोटा सा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है
0: शरीर में जहाँ भी हो,
1: शरीर में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। अगर हम इस इन्फ्लामेशन को रोज़ मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर जंक फूड खा रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेशन मेंटेन हो जाता है
0: जी।
1: ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है।
0: ओके।
1: तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम मेंटेन करते हैं, और क्या हो जाता है कि जो आर्टरीज हैं, जब भी वो हमारे शरीर के अंग में जाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है
0: जी।
1: और उस जोन में इन्फ्लामेशन होना ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर जो है हमें कोलेस्टेरॉल के प्लाक्स दिखने लगते हैं, डिपॉजिट हो जाता है, और वो डिपॉजिट इन्फ्लामेशन से जुड़ा हुआ था, और हमारे शरीर, हमारे खून में जितने भी कोलेस्टेरॉल के लेवल हैं उससे भी जुड़ा हुआ। तो जब ये इन्फ्लामेशन कंस्टेंट हो जाता है, या हमने ज़्यादा खा लिया हो, तो उसका इन्फ्लामेशन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिट ज़्यादा होता है, और क्या हो जाता है, एक समय आ जाता है जब वो उसका लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो खून आ रहा है और उसको जो खून लेना चाहिए वो
0: रुक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमें शरीर को अच्छा नहीं लगता, तो अगर वो कोरोनरीज में होता है तो हमें हृदय रोग होता है, लेकिन ये
0: शरीर के किसी अंग में
1: भी हो सकता है, तो ये इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल।
1: लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है या हमारे
0: थोड़ा कुछ जंक फूड या थोड़ा कुछ तेल वाला खा लेने से
1: नहीं, ये प्योरली इन्फ्लामेशन का काम होता है।
0: बिल्कुल,
1: और ये है जो जैसे कि हम एक घर बनाते हैं
0: जी,
1: तो पहले उसका

0: फाउंडेशन होता है उसके ब्रिक्स होते हैं
1: जी,
0: तो इन्फ्लेमेशन इसका काम करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमें
1: डॉक्टर जी यहाँ पर इशारा हो रहा है कि एक श्रोता है लाइन पर, आइए सुनते हैं उनका सवाल। हेलो
2: हेलो रचना जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है।
2: मैं ठीक से नहीं सुन पाई कि डॉक्टर कौन डॉक्टर बात कर रहे हैं।
1: आज डॉक्टर जी बात कर रहे हैं हृदय के रोगों पर, दिल की कोई भी बीमारी है उस पर।
2: उसका नाम क्या है डॉक्टर जी का नाम बता सकते हैं?
1: डॉक्टर जी का नाम है धर्मेश रामलगन जी।
2: हाँ लगन जी, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि मेरे दिल में एक बीमारी है, ये मैं 3 साल पहले ऑजो किया है
1: जी।
2: तो मैं चल नहीं सकती हूँ ठीक से, दर्द होते हैं।
1: हाँ हाँ,
2: क्यों, क्या कारण है इसका?
1: जी फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा चाची जी।
2: मैं 2 साल पहले ऑजो किया है दिल का।
1: हाँ,
2: तो मैं थोड़ा चलती हूँ तो दर्द होने लगता है, ठीक से चल नहीं सकती हूँ
1: जी।
2: उसका क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर जी से मुझे ये
1: जानना है। चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से, आप रेडियो पर सुनिए। जी हाँ डॉक्टर जी, उन्होंने 2 साल पहले एंजियो किया था, तो अब जब वो चलती भी है थोड़ा सा तो उनको दर्द शुरू हो जाता है।
0: ये टिपिकल केस है, हमने पहले भी बोला था क्यों हमारे शरीर में लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब वहाँ चल, जब ये आपकी उम्र क्या है?
1: नहीं शायद फोन कट गया है।
0: हाँ,
1: हाँ जी।
0: तो जब वो चलती हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, हमारे हृदय का डिमांड भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई भी जगह में ब्लॉकेज होता है तो वो सप्लाई नहीं हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज
1: है।
0: तो अगर उसको सीने में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ टेस्ट करना है। और अगर एंजियो भी किया है, एंजियो क्या होता है कि हम एक तार को हमारे आर्टरीज में डालते हैं
1: जी,
0: हृदय तक लाते हैं
1: जी,
0: और उसमें एक प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सारे आर्टरीज को देख सकें
1: जी।
0: तो जानना चाहिए कि जब उन्होंने ये किया तो क्या देखा
1: जी,
0: क्या कोई प्रॉब्लम हुआ, क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या उसको उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। लेकिन ये जानना चाहिए कि जो भी एंजियो आपने 1 साल से ऊपर किया
1: जी,
0: तो वो इनवैलिड हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि 2 साल में अगर उसका कोई प्रॉब्लम बेसलाइन में हुआ तो वो बढ़ सकता है। तो उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको
1: तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने रेंडेवू पर जा रहे हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स पर जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता है तो आप बैठे ना रहें, आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं हो सकता है कि ये डेंजरस हों, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि बिल्कुल सिचुएशन हो सकता है कि आपके दिल को लेकर गंभीर हो सकती है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। चलिए इसी के साथ, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है हमारे हृदय पर? डॉक्टर जी आजकल तो ये फैशन हो गया है कि अगर सिगरेट स्मोक ना करो तो आपके दोस्त आपको नीचा दिखा देंगे, या फिर शराब ना लो तो ऐसे कहेंगे कि ये थोड़ी चलता है आज की सोसाइटी में, तो ये हमारे दिल को कैसे प्रभावित करता है?
0: लेकिन पहले ये एक फिलोसॉफिकल आंसर है। अगर आपने कहा कि आपके दोस्त आपको नीचा दिखाएंगे, आपके दोस्त आपको अभी नीचा दिखाएंगे, बाद में वे नीचे दिखेंगे,
1: तो ये समझना बहुत जरूरी है।
0: ये समझना चाहिए। तो जब भी हम धूम्रपान करते हैं तो उसका उसके इफेक्ट्स जो हैं हमारे सिर्फ हृदय पे नहीं होता, हमें पूरे शरीर में होता है। और वो हमने पहले भी बताया उसका मेन रीज़न है इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, और जो इन्फ्लामेशन धूम्रपान से होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है।
1: सही, बिल्कुल।
0: तो हम और हमें ये भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति आते हैं और हमें बोलते हैं सर मैंने 3-4 सिगरेट पिए लेकिन मुझे भी हृदय रोग हुआ, उसने एक पैकेट भी पिया उसको भी हृदय रोग, उसे क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, तो मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब भी ये धुआं हमारे खून से उसका कंटक हो जाता है तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट

0: ठीक करता है. और जैसे कि हम
1: सिर्फ धुएं के कांटेक्ट से इन्फ्लेमेशन हो सकता है,
0: तो हमारे जो भी व्यक्तियां हैं सब अलग होते हैं, जेनेटिक्स अलग होते हैं.
1: जी.
0: तो आप शायद आप एक सिगरेट पी रही है
1: जी,
0: तो आपका इन्फ्लेमेशन 100 गुना बढ़ेगा. कोई और एक सिगरेट पिएगा तो उसका इन्फ्लेमेशन 20 गुना ज्यादा होगा. एक वेरिएशन होता है जेनेटिक के अनुसार से. तो सॉल्यूशन क्या है? धूम्रपान छोड़ें.
1: बिल्कुल, जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके सेहत के लिए
0: फायदेमंद होगा और हमारे हृदय रोग भी कम हो जाएंगे.
1: बिल्कुल.
0: और हमारे फेफड़ों को भी अच्छा लगेगा.
1: बिल्कुल. चलिए, यहाँ डॉक्टर जी एक और इशारा हो रहा है टेलीफोन. जी हाँ, फोन कट गया है शायद. जी हाँ, 4028085 पर अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर है 4028085 पर. और बिल्कुल हमारे साथ दीपशिका बनी हुई है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और प्रोड्यूसर है रत्नमाला मंगरू जी. कादिया जी हमारे साथ तकनीक पर बने हुए हैं. और जैसे हम बात कर रहे हैं, धूम्रपान और शराब की लत अगर लगती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे हृदय को बिल्कुल रोगी बना ही देता है. आप निरोगी नहीं सकते. और जैसे डॉक्टर जी, आज का समय तो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ का हो गया है. एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, हम थोड़ा चलना भी पड़े तो हम गाड़ी लेकर जाते हैं या मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं. तो एक्सरसाइज ना करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज हम पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, तो क्या ये भी हमारे हृदय को प्रभावित करता है?
0: क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं करता, हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो हम चल नहीं रहे हैं, उस पंप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. जो भी एनर्जी उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं. ये सिर्फ हृदय को नहीं, सारे अंग जो हैं उस पर प्रभावित होता था. और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है आपने कहा, तो जब हम उस सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं करते तो हम, जैसे कि हमने बताया एमिशन से कि पहले भाग में 5 लीटर पर मिनट जो खून का बहना होता है, और एक्सरसाइज करने पे ये 4-5 गुना ज़्यादा होता है, उसका वेरिएशन होना ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर हम ये मेंटेन नहीं करते तो उसमें इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, उसमें आर्टरीज के प्रॉब्लम आ जाएंगे, और हमारे जो हृदय का मसल है वो भी सेडेंटरी हो जाता है. क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं पूरे हफ्ते में काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता.
1: बिल्कुल, लेजी हो जाता है.
0: लेजी हो जाता है. और जैसे कहते हैं, आपको क्रियोल में बोलते हैं, पेशेंट्स बोलते हैं मैं फिजियोथेरापी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नेचुरल फिजियोथेरापी है इस हृदय के लिए.
1: बिल्कुल.
0: एक्सरसाइज करना उसके लिए नेचुरल फिजियोथेरापी है.
1: बिल्कुल.
0: उसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमें एक्टिव रहना चाहिए. हमें जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या फ्यूल ला रहे हैं इस शरीर में.
1: चलिए, यहाँ पर एक श्रोता है, सुनते हैं उनका सवाल. हेलो.
2: हेलो, नमस्ते रत्ना बेटी.
1: नमस्ते. नमस्ते दादी, तो हर स्वागत बा.
2: हाँ
1: बोला.
2: हमार नौ बरिस हो गल, और जो कर ले लिए तब ऐसो बेटी.
1: हाँ,
2: तब से तो बहुत अच्छा रही. तो टेस्ट लगे गईली, फैटमा करीला, अब तक कमर के दुलेर उठल बाटे. कागज दिल बा डॉक्टर ले जो, डॉक्टर से पूछे के जोन के फैटमा करीला दिल के बीमारी के ना.
1: हाँ
2: हाँ, सिर्फ पास स्कैन में पास होई ऐसो बा पूछो तो डॉक्टर के. डॉक्टर जी नमस्ते.
0: नमस्ते दादी जी.
1: वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऑंजो भी किया है और उन्होंने गैसो डाला है, तो उनकी कमर में दर्द हो रहा है, क्या ये रिलेटेड है इन सारे ट्रीटमेंट की वजह से उनको कमर में दर्द हो रहा है?
0: आमतौर पर नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि उसका ओवरऑल हेल्थ कैसा हुआ, कैसा हो रहा है. तो अगर सीने में दर्द हुआ तो उसने स्टेंट डाला, गैसो डाला, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन मेडिकेशन लेना चाहिए
1: जी,
0: ये फॉलोअप में है
1: जी.
0: लेकिन अगर कमर में दर्द हो रहा है, ये बहुत चीज़ें हो सकती हैं, या वो या बुढ़ापे में से आ जा सकता है, हमारे जो भी हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी आ जा सकते हैं, बैक मसल्स
1: जी,
0: हमारे पीठ में जो मसल्स होते हैं उससे भी आ जा

0: सकता है,
1: यानी बहुत सारे बहुत सारे कंडीशंस
0: और हमारे जो है जो बोलते हैं क्रियोल में लाओंस, लाओंस और हमारे जो घुटनों में भी उसमें भी दर्द हो सकता है, लेकिन वो दर्द हमारे पीठ पर भी प्रभावित हो जाता है। तो क्या है कि इस दादी के सॉल्यूशन के लिए उसको एक अच्छा डॉक्टर देखना चाहिए, जनरल डॉक्टर, ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह से एग्जामिनेशन हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए, यहाँ पर एक और श्रोता है, उनको भी सुन लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, हाँ जी नमस्ते जी।
2: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ जी
2: डॉक्टर जी के भी नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर, मैं आंजो किए थे 15 बरिस हो गए, रेसो डाली थी मैं, रेसो है मेरे दिल में, तो तब से ठीक थी, अब जब चलती हूँ तब थक जाती हूँ। क्यों
1: जान सकते हैं आपकी उम्र कितनी है?
2: 77।
0: देखिए अगर उन्होंने स्टेंट डाला है जो रेसो बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि हार्ट में ब्लॉकेज हुआ था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये 15 साल पहले की बात है, 15 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं
1: जी,
0: क्योंकि अगर एक सिंपल एंजियो एक साल में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो बिगड़ सकता है
1: जी।
0: तो ये 15 साल की बात हुई।
1: बिल्कुल।
0: अगर उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांसों में सांसें में लेने में कठिनाई हो रही है
1: जी,
0: तो उसका फिर से अच्छी तरह से चेकअप होना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें देखना चाहिए क्या इस क्या वो जगह जब जहां उसने स्टेंट डाला, रेसो डाला, क्या वो ठीक है, या फिर क्या उस जगह पर फिर से प्रॉब्लम आ गया हो, और हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या दूसरे जगह जहां पर प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्या वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस सब को देखना चाहिए, और सिंपल सा तरीका है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरी तरह से एग्जामिनेशन करना चाहिए उसको। इस केस में
1: जी,
0: उसको ईसीजी करना चाहिए, ताकि हम दिल के जो भी कंडक्शन सिस्टम को देख सके
1: जी,
0: और पूरी अच्छी तरह से एको, यानी कि उस मसल के फंक्शन को देखना चाहिए, तब इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और हम जान सकते हैं कि या इस पेशेंट को फिर से एंजियो करना पड़ेगा या नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एंजियो या नहीं, क्योंकि अगर उसने 15 साल एंजियो नहीं किया था
1: जी,
0: तो हम सोच सकते हैं क्या कोई और तरीका है देखने के लिए, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो उनको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि उसको एक पहले भी हाथ उसका एक पहले हादसा हो चुका है, तो अब वो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, तो हमें वक्त नहीं
1: वेस्ट करना चाहिए, तुरंत तो उनको दिखाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा कोई भी हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार फिर से आप अपना चेकअप करवाएं। हो सकता है कि जहां स्टैंड डाला वहां नहीं, पर कहीं और जगह पर कोई आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, शायद इसी कारण आपको दर्द हो रहा है। और इसी के साथ जी हाँ डॉक्टर, आज जो जीवन है, आज का जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है, टेंशन आए दिन रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम पूरी नींद नहीं ले पाते, ठीक से सो नहीं पाते। तो क्या ये सारी चीज़ें भी हमारे हृदय को हेल्दी रखने को, मतलब बीमार कर सकता है हमारे दिल को?
0: हाँ, ये सब हमारे दिल को बीमार कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट वे है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ये हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमारे चलने खाने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है।
1: बिल्कुल।
0: और ये इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम मेरे जैसे डॉक्टर जो हैं, हम गंभीर समस्या को देखते हैं
1: जी।
0: तो हम ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो एडल्ट्स के हो, बच्चे के हो, तो हम उसमें रहते हैं, उस स्पेशलिटी में रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उस पेशेंट, जो भी पेशेंट आते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उनके शरीर पर।
1: बिल्कुल।
0: और आप जो कह रही हैं मॉनिटर टाइम, स्ट्रेस, ये सब इमोशनल चीज़ें आएंगे, लेकिन देखना चाहिए कि उसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफस्टाइल

कैसे हो रहा है. अगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं, उनको बहुत लाइफ उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं और ज़्यादा खाने लगते हैं. तो ये हम जानते हैं ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएगा, लेकिन क्यों ज़्यादा खा रहे हैं? क्योंकि उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहा है.

0: क्यों हो रहा है, बिल्कुल
1: ये उस प्रॉब्लम का जड़ कहाँ से हो रहा है।
0: तो ये सारी समस्या, मतलब कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, वो डायरेक्टली हिट नहीं करता आपके हृदय को, पर कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड होता है और वो लंबे समय पर कैसे, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्लो पॉइजन की तरह ये काम करता है और बेशक आपके दिल को, आपके हृदय को ये प्रभावित करता है। तो डॉक्टर जी, जैसे हम जानते हैं हार्ट अटैक की समस्या जो है, आए दिन आज देखा गया है कि छोटे जो यंग जो ग्रोइंग कह सकते हैं कि 30-35 ईयर्स की उम्र वाले जो लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या ये सेम है या फिर इनमें कोई अंतर
1: नहीं
0: है?
1: नहीं, ये सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट उसका मतलब होता है कि जो हृदय का काम, हृदय में मसल जो होते हैं उसका काम बंद हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब ठप पड़ जाता है एकदम से।
1: कार्डियक अरेस्ट तो उसका मतलब ये कि अगर हमने उसको उसको उसका हेल्प नहीं किया, उसको मैसेज नहीं किया, तो वो मर जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम जानते हैं कि उसका मसल जो है उसका काम करना बंद हो गया है। अगर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा हो, नहीं कि ये हार्ट अरेस्ट नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, हार्ट अटैक उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का लो ऑफ डिमांड सप्लाई बंद हुआ और जहाँ भी उस हृदय के कुछ अंग में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सीने में दर्द होगा या उसको पीठ में दर्द होगा, लेकिन उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, लेकिन उसका हार्ट अरेस्ट नहीं होगा, उसका दिल का काम करना बंद नहीं होगा, स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, लेकिन बंद काम करना बंद नहीं होगा
0: जी।
1: तो ये अंतर है उस हार्ट अटैक में और हार्ट अरेस्ट में।
0: जी जी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनको तुरंत मेडिकेट किया गया या तुरंत उनको जैसे पंप किया गया तो हो सकता है कि वो बच सके।
1: हाँ हाँ, लेकिन तुरंत पंप करना चाहिए
0: जी।
1: और ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है, क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन को इस पंप के टेक्निक से उस पंप के टेक्निक का ट्रेनिंग मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसकी एक फर्स्ट एड, जैसे हमने थोड़े दिन पहले फर्स्ट एड का भी एक प्रोग्राम किया था जहां पर हमें डॉक्टर ने बताया था कि किस तरह से ये होता है और बकायदा इसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि आप यूं ही आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप विदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्कूलों में या फिर छोटे क्लासों में हम बच्चे को सिखाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, उसका हार्ट अरेस्ट हुआ हो, तो आप कैसे उसको पंप करें और कैसे उसको
0: बचाया जा सके। बिल्कुल,
1: तो ये हमारे स्कूलों में उसको सिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हाँ
0: जी हाँ।
1: और हम ये भी देखते हैं कि कुछ यानी शॉपिंग मॉल्स में जब आप जाते हैं विदेशों में, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने डेफिब्रिलेटर्स का काम का इस्तेमाल करने के लिए उनको रखा हुआ है।
0: अच्छा,
1: अगर कोई भी व्यक्ति उसका हार्ट अरेस्ट हुआ हो तो पंप करना चाहिए, तो एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन डिफिब्रिलेटर्स भी उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये शॉक देता है।
0: ओके,
1: तो ये लाइफ सेविंग डिवाइस होते हैं और हमें हमें इसका ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझती हूँ ये जो जानकारियाँ हैं ये तुरंत, मैं समझती हूँ ये हर एक को ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और किसी की ऐसी सिचुएशन आ जाती है और अगर आपके पास ये नॉलेज है तो डेफिनेटली एक जान बचाई जा सकती है, और हो सकता है कि मेडिकल के वहाँ तक आने तक आप।
1: हाँ, क्योंकि आप 2020 या 2019 में जब कोविड हुआ था तो एक टेक्नोलॉजी से एक ऐप हुआ हमारे मोबाइल में, एक ऐप हुआ, उस ऐप में जो भी व्यक्ति पंप जानना चाहते थे या भी जहां भी एक डेफिब्रिलेटर होता है उसका जो भी उसका जो भी इंफॉर्मेशन उस ऐप में होता था, तो लोगों को पता चलता था कि अगर एक प्रॉब्लम हुआ तो मैं कहाँ पर डिफिब्रिलेटर देख सकता हूँ या फिर कहाँ पर वो व्यक्ति मिलेगा जिसको पंप करना उसके नॉलेज हुआ।
0: बिल्कुल,
1: तो इसका असर जो है लाइफ सेविंग हुआ, क्योंकि बहुत सारे
0: लोगों को इसका मतलब एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन में जहाँ पर एक लाइफ, एक जिंदगी कोई गंवा रहा है, उसमें आप उसको

0: पूरी तरह से हेल्पिंग हैंड दे सकते हो। डॉक्टर जी, ऑलमोस्ट हम आज के इस प्रोग्राम के समाप्ति तक आ पहुँचे हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे हृदय को कैसे हेल्दी रखना है, इस पर एक समअप करते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, आपको देखना चाहिए कि पहले आप अपने शरीर में क्या फ्यूल ला रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप पेट्रोल पंप के स्टेशन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग तरह के फ्यूल होते हैं, तो आप अच्छी फ्यूल डालेंगे ताकि आपके मोटर में
0: लंबे समय तक चले। सही।
1: तो आपके शरीर ऐसे भी काम करता है, तो आपको देखना चाहिए कि मैं रोज उस शरीर में क्या डाल रहा हूँ। अगर आप ये एनर्जी है, लेकिन अगर आप एनर्जी ज्यादा डालते हैं लेकिन एक्सरसाइज या फिर आप अच्छी तरह से चल नहीं रहे, उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, और आपकी लाइफस्टाइल जो भी हम बदल सकते हैं, जैसे कि
0: जो हमारे कंट्रोल में,
1: धूम्रपान, हमारा वेट, हमारे खाने के तरीके, तो ये सब कंट्रोल में होता है, तो उस हमें उस पर फोकस करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ला सकते हैं, और जो भी उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, जो भी रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका कंट्रोल करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये हमारे हम एक देश में हैं जहाँ पर आसपास समुद्र होता है, हम यूरोप में नहीं हैं जहाँ पर एक बड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे आसपास कुछ भी नहीं है।
0: सही।
1: अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और मेडिकल टर्म्स में जब भी हमें कोई भी इशू होता है एक पेशेंट में,
0: जी,
1: तो हम देखते हैं कि क्या ये मॉरिशस में सॉल्यूशन हो सकता है या फिर विदेश जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उस सिचुएशन में ना आए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल सही।
1: तो ये मेरा मैसेज है।
0: बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर जी ने कहा कम शब्दों में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करें उन सारी चीज़ों को जो आपके हृदय के रोगों को बढ़ा सकती है। डेफिनेटली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में जो भी बदलाव हम ला सकते हैं उसे अप्लाई करें, और बिल्कुल समझदारी के साथ अपने ज़िंदगी को आगे ले जाएं, क्योंकि आपका हृदय जो है वो 2400 घंटे काम करता है, और आपके हृदय का ख्याल रखना ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो जी हाँ, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये कार्यक्रम आप दोबारा से सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ हमारे टेक्निकल टीम पर कादिया जी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और रत्नमाला जी हमारे साथ बनी रही। जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

Yeah.

0: आपके लिए और अभी के लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन दिल से मिले दिल प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए और साथ देने के लिए शुक्रिया मैं हूं परी आपके साथ
1: You're listening to RM3 रेडियो मनोरंजन

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. बिल्कुल जी, प्यार भरे दिन तो आ गए हैं और रेडियो मनोरंजन पर प्यार ही प्यार बेशुमार आपके लिए लेकर आते हैं. दिल से मिले दिल हमारा ये प्रोग्राम आपके नाम, और अभी के लिए कुमार सानू साधना सरगम की आवाजें. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: सर्व शस्त्रेषु कुशलः कर्णो वै कर्तनो महान् अजेयः समरे वीरः सर्वलोकस्य विश्रुतः। महान वै कर्तन कर्ण सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशल था। वह युद्ध में अत्यंत दुर्जेय और समस्त संसार में प्रसिद्ध वीर था। श्रोताओं, कर्ण के बहुआयामी कौशल और वीरता से आधुनिक जीवन में अनेक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। आज सफलता के लिए केवल एक क्षेत्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को निरंतर सीखते हुए विविध कौशल विकसित करने चाहिए। कठिन परिस्थितियों में धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बनाए रखना आवश्यक है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा में नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर प्रयास सफलता के आधार हैं। तकनीकी दक्षता के साथ नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन भी अति आवश्यक है। कर्ण के चरित्र से हमें यह संदेश मिलता है और यह प्रेरणा भी मिलती है कि अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका सदुपयोग हम करें और असफलताओं को सीखने का अवसर मानकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान तथा MBC के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रोफेसर राजशेखर भी अपनी स्वरचित कहानी लेकर हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो विलंब न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हृदय की गहराई से आभार गुरु बिस्वा।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम मन कही एक कहानी में। प्रिय श्रोतागण, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उन असंख्य चरित्रों की कहानी है जिनके जीवन में संघर्ष, सम्मान, अपमान, प्रेम, मित्रता, वचन, धर्म और नियति सब एक साथ दिखाई देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक अद्भुत और बहुआयामी योद्धा की है, महारथी कर्ण की। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म रहस्य से घिरा था, जिसे जन्म देने वाली माँ ने लोकलाज के भय से नदी की धारा में बहा दिया था, जिसका पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ, जिसने महान धनुर्धर बनने का स्वप्न देखा, जिसे शिक्षा के मार्ग में छल और श्राप का सामना करना पड़ा, जिसने मित्रता के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया और जिसने अपने प्राणों से भी अधिक महत्व अपने दान, वचन और स्वाभिमान को दिया। तो आइए आज हम उस प्रश्न के साथ कर्ण की कथा में प्रवेश करेंगे, क्या मनुष्य की पहचान उसके जन्म से होती है या उसके कर्मों से। सुनते हैं महारथी कर्ण सूरी पुत्र की अनकही कहानी। तो हाँ प्रिय श्रोतागण, कहानी जो है इस प्रकार शुरू होती है। यह महाराज कुंती भोज के राजमहल का एक अत्यंत एकांत और अंधेरा कक्ष था। राजकुमारी कुंती अत्यंत भयभीत और व्याकुल अवस्था में अपने नवजात शिशु को टकटकी लगाते देख रही थी। उसी क्षण कक्ष में उनकी प्रिय दासी का चुपचाप प्रवेश हुआ। कुंती आंखों में आंसू भरकर कह रही है, हे देव, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया। बाल सुलभ चपलता और उत्सुकता में मैंने मुनि दुर्वासा के दिए मंत्र से भगवान सूर्य का आह्वान कर दिया। देखिए दासी, सूर्य देव की अनुकंपा से यह कैसा तेजस्वी और अलौकिक बालक जन्मा है। इसके शरीर पर स्वर्ण का कवच

0: और कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे हैं। दासी वहीं पर थी। उसने कुंती से कहा,
1: देवी कुंती, यह तो ईश्वर का चमत्कार है, परंतु आप इतनी व्यथित क्यों हैं?
0: हे दासी, मेरी व्यथा का अंत नहीं है। मैं अभी अविवाहित हूं। यदि समाज और हस्तिनापुर के राजवंश को इस शिशु का ज्ञान हुआ तो कुल की मर्यादा धूल धूसरित हो जाएगी। लोक लाज के भय से मेरा हृदय कांप रहा है। मैं इस नवजात को कैसे अपना सकती हूँ दासी, कैसे अपना सकती हूँ?
1: परंतु देवी, आप इस अबोध बालक का क्या करेंगी? इसका परित्याग करना तो अत्यंत कठोर निर्णय होगा।
0: मेरी ममता छिन्न भिन्न हो रही है दासी, परंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। दासी, एक जलरोधी टोकरी लाओ। मैं अपने इस प्राण प्रिय पुत्र को गंगा की धाराओं के सुपुर्द कर दूंगी। हे माँ गंगे, मेरे इस अबोध बालक की रक्षा करना। और कुंती रोते हुए बालक को टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। बहती हुई टोकरी हस्तिनापुर के पास तट पर पहुंचती है, जहां सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा उपस्थित थे। अचानक जल में टोकरी के आते हुए देखकर राधा कहती है, स्वामी जरा उधर देखिए तो, गंगा की उठती लहरों के बीच वह सुंदर टोकरी बहती चली आ रही है। उसमें से कुछ दिव्य प्रकाश भी निकल रहा है। राधा के जो पति अधीरथ हैं, वे भी चौंक कर देखते हैं और बोल पड़ते हैं,
1: हाँ प्रिय, मैं भी देख रहा हूं। ठहरो, मैं अभी नदी में उतरकर उस टोकरी को बाहर लाता हूं।
0: अधीरथ नदी में उतरकर टोकरी तट पर लाते हैं और ढक्कन हटाते हैं। और ढक्कन हटाने के साथ राधा आश्चर्य और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, यह तो एक दिव्य बालक है। इसके असीम रूप और चमकते कवच कुंडल को देखिए। स्वामी, ईश्वर ने हमारी वर्षों पुरानी संतानहीनता की पीड़ा को हर लिया है।
1: सत्य कहा प्रिय, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं लगता। इसके मुखमंडल पर सूर्य का तेज है। आज से यह हमारा पुत्र है। इसका नाम होगा वसुषेण।
0: बालक को छाती से लगाते हुए राधा कहती है, और मैं इसे राधे कहकर पुकारूंगी स्वामी, राधे, मेरा पुत्र राधे। गंगा की पावन धाराओं से प्राप्त बालक राधे, जो कि कर्ण है, सूत सारथी अधिरथ और माता राधा के वात्सल में बड़ा होने लगा। यद्यपि वह एक सूत कुल में पल रहा था, परंतु उसके भीतर का क्षत्रिय तेज और धनुर्विद्या के प्रति असीम अनुराग उसे सामान्य बालकों से पृथक करता था। जब वह युवा हुआ तो ज्ञानार्जन की तीव्र उत्कंठा के साथ हस्तिनापुर के आचार्य द्रोण के पास पहुंचा, किंतु सूत पुत्र होने के लांछन के कारण आचार्य द्रोण ने उसे शस्त्र विद्या देने से स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। अपमान और निराशा की अग्नि में जलते हुए कर्ण ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर बनकर दिखाएगा। इसी संकल्प पूर्ति हेतु उसने ब्राह्मण का छद्म वेश धारण किया और महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान महर्षि परशुराम के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाते हुए कहा, हे भार्गव श्रेष्ठ, हे परशुराम गुरुदेव, मैं ज्ञान और धनुर्विद्या की परम अभिलाषा लेकर आपके आश्रम में उपस्थित हुआ हूं। कृपया कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। भगवान परशुराम नेत्र खोलकर कर्ण के तेज को देखते हैं और उसे निहारते रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं,
1: उठो वत्स,

0: तुम्हारा मुखमंडल किसी तेजस्वी जानी के समान दीदीप्यमान लगता है, परंतु स्मरण रहे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देता हूं। क्या तुम एक ब्राह्मण हो?
1: भगवान परशुराम की बात सुनते ही कर्ण के हृदय में थोड़ा संकोच भी हुआ और वे भयभीत भी हुए, क्योंकि कर्ण एक सत्य छुपा रहे थे। हिचकते हुए बोले,
2: जी गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण ही हूं। आपके चरणों में रहकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है गुरुदेव, एकमात्र लक्ष्य।
0: उचित है, तुम्हारी साधना और निष्ठा देखकर मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र सहित समस्त दिव्य अस्त्रों का गोढ़ ज्ञान प्रदान करूँगा।
1: बरसों बीत जाते हैं। कर्ण अपनी सेवा भावना और लगन से गुरुदेव का प्रिय शिष्य बन जाता है। और एक दिन क्या होता है, एक दोपहर वृक्ष की छाया में महर्षि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक तीक्ष्ण विषैला कीट आया और कर्ण की जांघ में डंक मारने लगा, उसे असीम पीड़ा पहुंचाने लगा। गुरुदेव की निद्रा भंग न हो इसलिए कर्ण असहय वेदना सहते हुए निश्चल बैठे रहे। बहता हुआ गर्म रक्त जब परशुराम जी के स्पर्श में आया तो उनकी निद्रा खुल गई और चौंकते हुए वे गरजे,
0: वत्स, यह क्या? तुम्हारी जांघ से रक्त की धारा बह रही है और तुम शांत बैठे रहे? ऐसा असह्य कष्ट और दैहिक सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम कर्ण? कौन हो?
1: भगवान परशुराम के इस रौद्र रूप को देखते ही कर्ण अंदर से भयभीत हो जाता है और कांपते हाथों से क्षमा मांगते हुए गुरु के सामने गिर गिराता है।
2: गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं ब्राह्मण नहीं हूं गुरुदेव, हस्तिनापुर के सुत अधिरथ का पुत्र कर्ण हूं। विद्या प्राप्त करने की तीव्र तृष्णा के कारण मैंने आपसे असत्य कहा गुरुदेव, असत्य।
0: छल, यह तो छल हुआ कर्ण। तुमने विद्या पाने के लिए अपने गुरु से असत्य बोला। जिस ज्ञान की नींव ही असत्य पर रखी गई हो वह निष्फल होगी। मेरा श्राप है कर्ण, जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में मेरी सिखाई हुई विद्या और ब्रह्मास्त्र की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसका प्रयोग भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे।
1: अपने गुरु के मुख से ऐसा करवा सत्य और श्राप सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। अश्रुपूरित नयनों से कर्ण ने कहा, गुरुदेव, यह आपने क्या किया गुरुदेव? विद्या पाने का मोह था, कोई दुराशय नहीं। कृपया इस शिष्य को, छात्र को क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें।
0: कर्ण, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता अब, किंतु तुम्हारी भक्ति और सहनशीलता देखकर मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा धनुर्धर कभी न हुआ है और कभी न होगा।
3: गली गली तेरी लाज जली जी और रब।

0: गुरु परशुराम के आश्रम से भारी मन और अस्त्र विद्या के विस्मरण का साप लेकर कर्ण हस्तिनापुर लौट आया। यद्यपि उसके पास अप्रतिम कौशल और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, परंतु सूत पुत्र का कलंक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही समय पश्चात हस्तिनापुर में कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के उपलक्ष्य में एक विशाल रंग भूमि कला प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहां अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया और द्रोणाचार्य ने उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। यह सहन न कर सकने के कारण कर्ण गर्जना करते हुए रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी प्रत्यंचा की टंकार करते हुए अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। हे आचार्य द्रोण, केवल अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मत कहिए। जो कला अर्जुन ने दिखाई है उसे श्रेष्ठ कौशल मैं दिखा सकता हूं। अर्जुन, यदि तुम में वास्तव में साहस है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध। आगे बढ़ते हुए कृपाचार्य ने कर्ण को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा,
1: हे अज्ञात वीर, युद्ध के भी नियम होते हैं। अर्जुन कुरु वंश का राजकुमार है, उससे द्वंद्व युद्ध करने से पूर्व तुम्हें अपना परिचय, कुल और वंश बताना होगा। एक राजकुमार केवल किसी राजा या राजकुमार से ही युद्ध कर सकता है, किसी साधारण या अज्ञात कुल के व्यक्ति से नहीं, कदापि नहीं।
0: कर्ण इस अपमान से सिर झुकाए हुए, आंखों में क्रोध के आंसू लिए हुए फुफकारता है, आचार्य, पराक्रम और शौर्य का संबंध किसी कुल या वंश से नहीं होता, मनुष्य की योग्यता से होता है।

0: फिर भी कुल के नाम पर मुझे लज्जित किया जा रहा है, आखिर क्यों? वहीं भीड़ में दुर्योधन खड़ा था, उसे कर्ण की पीड़ा देखी नहीं गई। वह ऊंचे स्वर में कहता है,
1: रोकिए यह प्रहसन। यदि राजा होना ही अर्जुन से युद्ध करने की एकमात्र योग्यता है तो मैं अभी इसी क्षण इस वीर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। हां, इसी क्षण।
0: और इस घोषणा के साथ ही दुर्योधन ने तुरंत पंडितों को बुलाकर रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया और उसके सिर पर मुकुट डाल दिया। और फिर कर्ण को मित्र बोलते हुए, संबोधित करते हुए दुर्योधन कह पड़ा,
1: हे मित्र, आज से तुम केवल राधेय नहीं अंगराज कर्ण कहलाओगे। अब कोई तुम्हारे कुल पर उंगली नहीं उठाएगा।
0: दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण भावुक हो गया। हे दुर्योधन, इस अमूल्य सम्मान और संकट के क्षण में मेरा मान रखने के बदले यह सुतपुत्र तुम्हें क्या दे सकता है?
1: मुझे केवल तुम्हारी निश्चल और अटूट मित्रता चाहिए कर्ण, बस मुझे यही चाहिए।
0: हे मित्र, आज से मेरा यह जीवन, मेरी भुजाएं और मेरा संपूर्ण पराक्रम सदैव तुम्हारी रक्षा और सेवा में समर्पित रहेगा। कर्ण अपनी अंतिम सांस तक दुर्योधन का मित्र रहेगा। और उस घटना के बाद दुर्योधन के साथ प्रगाढ़ होती मित्रता और अंगराज बनने के उपरांत कर्ण की दानवीरता की कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय गंगा नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करता और पूजा समाप्त होने पर द्वार पर आए किसी भी याचक को उसकी इच्छित वस्तु दान कर देता था। महाभारत के भीषण युद्ध का समय निकट आ रहा था। कौरव पक्ष में कर्ण जैसा अजय योद्धा था, जिसके पास जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल थे। इस कवच के रहते कर्ण को परास्त करना देवताओं के लिए भी असंभव था। अपने पुत्र अर्जुन की विजय को लेकर चिंतित देवराज इंद्र ने कर्ण की इसी दानवीरता का लाभ उठाने की योजना बनाई और एक छद्मवेशी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के द्वार पर पहुंचे और बोले,
1: हे सूर्य पुत्र, हे अंगराज कर्ण, जय हो आपकी, आपकी जय हो। एक निर्धन और असहाय भिक्षुक आपके द्वार पर आस लेकर आया है।
0: अपने द्वार पर एक ब्राह्मण को देखकर कर्ण हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए बहुत ही सहृदयी होकर कहता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अंगराज कर्ण का प्रणाम स्वीकार करें। मेरी पूजा संपन्न हुई है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? आप मुझसे स्वर्ण, गोदान, भूमि या संपूर्ण अंग देश का राज मांग लीजिए। कर्ण आपको खाली हाथ नहीं लौटने देगा।
1: हे दानवीर, मुझे राज्य, स्वर्ण या भूमि की कोई लालसा नहीं है। यदि आप वास्तव में वचनबद्ध है तो मुझे आपके शरीर का जो सुशोभित सहज स्वर्ण कवच और कानों के दिव्य कुंडल हैं, वे मुझे दान में दीजिए।
0: उस ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों छिपा रहे हैं? मैं भली भांति जानता हूं कि आप देवराज इंद्र हैं, जो अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल पूर्वक मेरे प्राण रक्षक कवच और कुंडल मांगने आए। अरे, आप निसंकोच कहें और अपने असली रूप में आए प्रभु।
1: हाँ कर्ण, तुम मुझे पहचान गए, फिर भी क्या तुम अपना दान देने से पीछे हटोगे?
0: कदापि नहीं देवराज। भले यह कवच और कुंडल मेरे जीवन की रक्षा के आधार हैं और इनके बिना मेरी मृत्यु संभव है, परंतु

0: कर्ण के द्वार से इंद्र जैसा देव भी खाली हाथ लौट जाए यह मेरे कुल और धर्म का अपमान होगा। प्रभु वचन ही मेरा धर्म है, अंतिम सत्य है। और यह कहकर कर्ण बिना किसी संकोच के अपने तीक्ष्ण चाकू से अपने शरीर से चिपके हुए कवच को काट कर अलग कर देता है और कानों से कुंडल निकालकर रक्त रंजित हाथों से इंद्र को सहर्ष सौंप देता है। कर्ण के इस महान त्याग और असीम दानवीरता से भगवान इंद्र भी थोड़ी सी लज्जा महसूस करते हैं और उसके त्याग से प्रभावित होकर कहते हैं,
1: हे कर्ण, तुम्हारे इस अलौकिक और निस्वार्थ त्याग ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी इस दानवीरता को युगों युगों तक नमन करेगी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांग लो कोई वरदान, मांग लो कोई वरदान।
0: हे देवराज, मैंने दान किसी वस्तु की लालसा में नहीं किया है, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपना अमोघ एकाग्नि बाण, जो वाशवी शक्ति से संपूर्ण है, प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु प्रदान करने की कृपा करें।
1: तथास्तु कर्ण, तथास्तु। यह अमोघ अस्त्र मैं तुम्हें सौंपता हूं, परंतु स्मरण रहे, इसका प्रयोग तुम केवल एक ही बार किसी परम शक्तिशाली शत्रु पर कर सकोगे और उसके वध के पश्चात यह पुनः मेरे पास लौट आएगा।
0: देवराज इंद्र अस्त्र देकर चले जाते हैं। शरीर से रक्त बहने के बाद भी दानवीर कर्ण के चेहरे पर एक असीम संतोष और मुस्कान तैर रही थी। कवच और कुंडल दान कर देने के उपरांत कर्ण बिना किसी रक्षा कवच के केवल अपने पुरुषार्थ और धनुर्विद्या के बल पर युद्ध में उतरने के लिए तत्पर था। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आ पहुंचा था और दोनों ओर से तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए तथा ज्येष्ठ पांडव कर्ण को धर्म संकट से उबारने की अंतिम चेष्टा के लिए स्वयं पांडवों की माता कुंती कर्ण के पास पहुंची। यह वही माता थी जिन्होंने जन्म के समय लोकलाज के भय से उसे गंगा की निर्मल धाराओं में बहा दिया था। शाम का समय था। संध्या वंदन समाप्त कर कर्ण गंगा तट पर बैठा था कि तभी कुंती की पदचाप सुनाई दी। उसने कुंती को सादर प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, अंगराज कर्ण का प्रणाम स्वीकार करें। आप हस्तिनापुर की राजमाता कुंती हैं। कहिए, इस संध्या वेला में एक सूत्र पुत्र के पास आने का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
1: हे वत्स, स्वयं को सूत पुत्र कहकर मेरे हृदय को और मत बीधो। तुम सूत अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो। भगवान सूर्य देव के अंश से जन्मे मेरे ज्येष्ठ पांडव हो।
0: यह रहस्य की बात सुनते ही कर्ण स्तब्ध रह जाता है। थोड़ी देर की गंभीरता के बाद वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, राजमाता, यह आप क्या कह रही हैं? यदि मैं आपका पुत्र हूं तो बाल्यकाल में मुझे उस बहती नदी के कालचक्र में क्यों ढकेल दिया गया? जब मुझे एक मां की ममता और आंचल की आवश्यकता थी, तब आपने मुझे त्याग दिया मां। और आज जब महाभारत का युद्ध द्वार पर खड़ा है, तब आपको अपनी ममता का स्मरण आ रहा है।
1: मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। वह मेरी कनिष्ठ आयु की अज्ञानता और समाज के लोक लाज का भय था, परंतु आज मैं अपने उस अपराध का प्रायश्चित करने आई हूं। युद्ध निकट है कर्ण, अपने अनुजों पांडवों के पक्ष में आ जाओ। युधिष्ठिर तुम्हारे चरण पखारेगा और तुम्हारे हस्तिनापुर के सिंहासन पर

0: राजा के रूप में सुशोभित किया जाएगा।
1: माता, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस समय संपूर्ण संसार मुझे सुत पुत्र कहकर नीचा दिखाता था, उस समय केवल दुर्योधन ने आगे बढ़कर मुझे मित्र बनाया था, अंग देश का राजा बनाया था और मुझे मान सम्मान दिया था। आज जब दुर्योधन को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब मैं केवल अपने स्वार्थ या जीवन रक्षा के लिए उसे धोखा दे दूं? ऐसा अधर्म कर्ण कभी नहीं कर सकता, मां, कभी नहीं कर सकता।
0: तो क्या तुम अपने ही भाइयों के विरुद्ध बाण चलाओगे कर्ण?
1: माता, आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। यद्यपि मैं दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ सकता, किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पांच पुत्र सदैव सुरक्षित रहेंगे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मैं युद्ध में परास्त करने के बाद भी जीवित छोड़ दूंगा। मेरा युद्ध केवल अर्जुन से होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात भी आपके पांच पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण।

कुरुक्षेत्र का मैदान रक्तपात और भीषण गर्जनाओं से थर्रा रहा था। युद्ध के 14 दिन बीत चुके थे। पितामह भीष्म सरसैया पर थे और महान आचार्य द्रोण का वध हो चुका था। कौरव सेना दिशाहीन और हतोत्साहित महसूस कर रही थी। ऐसे संकट काल में दुर्योधन ने अपने सबसे विश्वस्त मित्र और महावीर अंगराज कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। कर्ण ने सेनापति तो संभालते ही पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने अपने अमोघ बाणों से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। माता कुंती को दिए वचन

0: का पालन करते हुए उसने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध में परास्त तो किया किंतु उनका वध किए बिना छोड़ दिया। अंततः 17वें दिन वह घड़ी आ गई, महारथी कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित युद्ध भूमि, जहां चारों तरफ नर के लाश ही लाश बिछे हुए थे। लेकिन उस 17वें दिन चारों ओर शंखनाद हो रहा था, घोरों की हिनहिनाहट और बाणों की टंकार गूंज रही थी। दुर्योधन कर्ण का तिलक करते हुए कहता है,
1: हे मित्र कर्ण, द्रोणाचार्य के वीर गति प्राप्त होने के पश्चात अब कौरव सेना की विजय की संपूर्ण आशा केवल तुम पर टिकी है। अपनी अतुलनीय धनुर्विद्या से पांडवों का संहार करो और हमें विजय दिलाओ, विजय।
0: धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कर्ण चिल्लाता है, उत्साह से भरा हुआ है, मित्र दुर्योधन निश्चिंत रहो, आज या तो अर्जुन का मस्तक धर से अलग होगा या कर्ण वीर गति को प्राप्त होकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। आज का दिन कुरुक्षेत्र के इतिहास का सबसे भीषण दिन होगा। कर्ण युद्ध भूमि में भयंकर तांडव रचता है। अंत में कर्ण और अर्जुन के रथ एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों का प्रहार होने लगता है। युद्ध अपने चरम पर होता है कि तभी नियति अपना क्रूर खेल खेलती है। कर्ण के रथ का दायां पहिया कुरुक्षेत्र की दलदली मिट्टी में गहरा धंस जाता है। उसी समय परशुराम के शाप के प्रभाव से कर्ण ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी विस्मृत करने लगता है, विचलित हो जाता है, रथ से उतरते हुए कह पड़ता है, यह क्या, नियति भी आज पांडवों का साथ दे रही है? अर्जुन रुको, युद्ध के सनातन नियमों का पालन करो। अर्जुन, जब तक मैं अपने रथ का पहिया इस भूमि से बाहर ना निकाल लूं, तब तक तुम मुझ निशस्त्र पर बाण मत चलाओ। रथ के स्पंदन से गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, वे कहते हैं,
1: हे कर्ण, आज तुम्हें धर्म और युद्ध के नियमों का स्मरण हो रहा है? जब राजसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तुम उसे वैश्या कहकर हंस रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब बालक अभिमन्यु को छह छह महारथियों ने अधर्म से घेरा था, तब तुम्हारे युद्ध नियम कहाँ गए थे? अर्जुन, विलंब मत करो, यही उचित अवसर है, बाण चलाओ और इसको मृत्यु प्रदान करो, मृत्यु।
0: भगवान श्री कृष्ण के आह्वान के बाद कर्ण अपने रथ के पहिए को ठीक करने में उलझा हुआ है और भारी मन से भगवान कृष्ण को संबोधित करता है, हे कृष्ण, जो नियति को स्वीकार है वही होगा, मैं अपने कर्मों और वचनों से कभी नहीं भागा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गांडीव की प्रत्यंचा कान तक खींचते हुए अर्जुन कहता है,
1: हे अंजलि अस्त्र, अधर्म का नाश करो, नाश करो अधर्म का।
0: अर्जुन के अंजलि बाण के प्रहार से महारथी कर्ण का मस्तक धर से अलग हो जाता है। सूर्य का एक अलौकिक अंश पुनः सूर्य देव में विलीन हो जाता है। कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है।
1: अर्जुन, इस संसार में कर्ण जैसा दानवीर, योद्धा और मित्र न कभी हुआ था और न कभी होगा। इतिहास उसे सदैव एक पराक्रमी और अमर नायक के रूप में स्मरण रखेगा।
0: कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महारथी कर्ण के पतित होते ही कौरव सेना में हाहा

0: हाहाकार मच गया। संध्या ढलने के साथ 17वें दिन का भीषण संग्राम समाप्त हुआ। युद्ध के अंतिम दिन राजा शल्य के मरणोपरांत और भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दिए जाने के बाद महाभारत का महायुद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त हो गया। विजय के पश्चात हस्तिनापुर के विशाल तट पर मृत वीरों के तर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तभी पांडवों के सम्मुख एक ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ जिसने उनकी विजय के उल्लास को क्षण भर में महाशोक में बदल दिया। हाथ में जल लेकर युधिष्ठिर कहता है, हे गंगे, कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सभी संबंधियों, आचार्यों और वीरों की आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं कुंती खड़ी थी। माता कुंती बिलखते हुए युधिष्ठिर का हाथ रोकते हुए कहती है,
1: रुक जाओ युधिष्ठिर, रुक जाओ। पहले उस वीर का तर्पण करो जो इस भूमि का सबसे बड़ा त्यागी और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था।
0: ज्येष्ठ भ्राता? माता, आप यह क्या कह रही हैं? हमारे ज्येष्ठ भ्राता तो आप ही के समक्ष खड़े हैं।
1: नहीं युधिष्ठिर, अंगराज कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सगा ज्येष्ठ भाई था। वह मेरा प्रथम पुत्र था जो विवाह से पूर्व भगवान सूर्य देव के वरदान से जन्मा था।
0: इस रहस्य को जानते ही पांडवों के हाथों से जलपात्र गिर जाता है। अर्जुन स्तब्ध होकर खड़े रह जाते हैं और युधिष्ठिर का शरीर कांपने लगता है। हताश स्वर में अर्जुन कहता है, यह आपने क्या किया माता? अंगराज कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे। मैंने अपने ही बड़े भाई पर बाण चलाए, उनकी छाती को बिद दिया। आपने यह सत्य हमसे जीवन भर क्यों छिपाया माता? अपने क्रोध और असीम शोक में भरकर युधिष्ठिर भी कहते हैं, अधर्म हो गया माता, अधर्म। आपके इस इकमौन ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। यदि हमें सत्य ज्ञात होता तो हम कर्ण के चरणों में हस्तिनापुर का मुकुट रख देते। इस महान अपराध के प्रायश्चित स्वरूप मैं समस्त नारी जाति को यह शाप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने हृदय में कोई रहस्य छिपाकर नहीं रख पाएगी। भगवान श्री कृष्ण उन सभी को देख रहे थे। फिर वे आगे आते हैं और पांडवों को ढारस बंधाते हुए कहते हैं,
1: शांत हो जाओ युधिष्ठिर, शांत हो जाओ। यह नियति का विधान था। कर्ण का जीवन श्रापों, भेदभाव और छलों से घिरा था, किंतु उसकी कीर्ति को कोई धूमिल नहीं कर सकता। उसने मित्र धर्म के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया।
0: रोते हुए कर्ण के चित्र को अपने मस्तक पर याद करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, मुझे अपने अज्ञान पर लज्जा आ रही है। भ्राता कर्ण जैसा दानवीर और पराक्रमी योद्धा इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता।
1: सत्य वचन अर्जुन, सत्य वचन। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह त्याग, स्वाभिमान, दानवीरता और मित्रता का सर्वोच्च शिखर था, उदाहरण था। जब जब कुरुक्षेत्र का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब पांडवों की विजय से अधिक अंगराज कर्ण के त्याग और बलिदान की गाथा अमर रहेगी।

0: तो प्रिय श्रोतागण, आप कृपया हमें प्रोत्साहित करते रहिए और यह भी बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। कर्ण की कथा हमें जीवन के अनेक जटिल प्रश्नों से सामना कराती है। कर्ण का जीवन बताता है कि प्रतिभा को हमेशा परिस्थितियां नहीं मिलती, लेकिन संघर्ष करने वाला मनुष्य अपनी राह स्वयं बना सकता है। जन्म की परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम, साधना और पुरुषार्थ से स्वयं को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनके जीवन में मित्रता और कृतज्ञता का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्योधन ने जब कर्ण को सम्मान और अंगदेश का राज्य दिया, तब कर्ण ने उस उपकार को जीवन भर याद रखा। यही मित्रता आगे चलकर उन्हें महाभारत के युद्ध में एक कठिन नैतिक स्थिति के सामने खड़ा करती है। कर्ण के जीवन का सबसे प्रसिद्ध पक्ष है दानवीरता। जब उनसे उनके जन्मजात कवच कुंडल मांगे गए, तब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल तक दान में दे दिए। यह प्रसंग हमें त्याग, उदारता और अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रश्न सामने रखता है। लेकिन कर्ण की कथा केवल आदर्शों की कथा नहीं है, उसमें अंतर्द्वंद है और मानव की कमजोरियाँ भी हैं। यही कारण है कि कर्ण का चरित्र हमें सरल उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें सोचने के लिए विवश भी करता है। तो प्रिय श्रोतागण, हर बार की भांति इस बार भी मुहावरे का अर्थ और उस पर आधारित स्वरचित लघु कथा लेकर गुरु विश्वा हमारे सम्मुख बैठे हैं। इस बार के जो मुहावरे हैं वह है दानवीर कर्ण होना और दूसरा है झोली भरना। फिर से सुन लीजिए, इसका अर्थ आप स्वयं ढूंढिएगा। दानवीर कर्ण होना और दूसरा झोली भरना। पिछली बार के जो मुहावरे थे वे कान देना, जिसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे।
1: जी, इसका अर्थ है ध्यान से सुनना या ध्यान देना। यदि वाक्य में इसका प्रयोग करें तो होगा, शिक्षक की बात पर सभी छात्रों को कान देना चाहिए।
0: जी, और जो दूसरा मुहावरा था, आंखों में धूल झोंकना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है धोखा देना। और जैसे इसका प्रयोग यदि वाक्य में होगा तो कुछ ऐसा होगा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका आनंद उठाइए। एक गांव में मोहन नाम का ईमानदार युवक रह

0: रहता था। एक दिन एक चोर गांव की दुकान से धन चुराकर भागने लगा। उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने का प्रयास किया, लेकिन मोहन ने साहस और बुद्धिमानी से उसका पीछा किया। उसने चोर को पकड़वा दिया और चोरी का सामान दुकानदार को वापस मिल गया। पुलिस ने मोहन की प्रशंसा की। मोहन ने कहा, सच्चाई और साहस के सामने धोखा अधिक देर तक टिक नहीं सकता।
1: मुहावरे पर आधारित स्वरचित लघु कथा सुनाने के लिए गुरु बिस्वा का हार्दिक आभार। और आप सभी श्रोतागण, आप भी प्रयास कीजिए कि मुहावरे, लोकोक्ति जो आप रोज बोलते हैं या सुनते हैं, उस पर छोटी छोटी कथा लिखिए और बच्चों को सुनाइए। तो प्रिय श्रोतागण, अब आपके लिए आमंत्रण संदेश भी है। कर्ण की कहानी केवल महाभारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह पहचान, संघर्ष, मित्रता, सम्मान, वचन, दान और जीवन के कठिन निर्णयों की कहानी है। आपके जीवन में भी कोई ऐसी अनकही कहानी अवश्य होगी, किसी संघर्ष की, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने आपके जीवन में आपका साथ दिया, किसी कठिन निर्णय की, किसी त्याग की, या फिर ऐसी परिस्थिति की जिसने आपके आपको भीतर से बदल दिया हो। तो क्यों ना अपनी उस कहानी को हमारे साथ साझा करें। अपनी अनकही कहानी हमें professorrajsekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी हुई चुनिंदा कहानियों को हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही कहानी में प्रसारित किया जाएगा और भविष्य में उन्हें पुस्तक रूप में भी संकलित किया जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहानी होती है, कुछ कहानियाँ दुनिया सुनती है और कुछ कहानियाँ मन के भीतर ही रह जाती हैं। आइए अपनी उस अनकही कहानी को शब्द दीजिए और हमारे साथ साझा कीजिए। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी अनकही कहानी हमारे साथ साझा करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।
0: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों व सूचनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, तेजसा वहनी सदृशो वात वेग समो जवे, क्रोधे रुद्र समह कर्णः, सिंह संहननो बली। अर्थात, तेज में कर्ण अग्नि के समान, वेग में वायु के समान, क्रोध में रुद्र के समान और शरीर की दृढ़ता में सिंह के समान शक्तिशाली था। कर्ण के तेज, वेग और शक्ति का वर्णन आधुनिक जीवन में अनेक प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। आज सफलता के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। समय का सदुपयोग करते हुए कार्यों को तत्परता और दक्षता से पूरा करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक संतुलन भी आवश्यक है। श्रोताओं, दो शब्द हैं, क्रोधे रुद्र समह, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। इन दो शब्दों के अर्थ, हमें क्रोध को अनियंत्रित करने के बजाय उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की प्रेरणा देनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। कर्ण से हम यही सीखते हैं। नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से क्षमताओं का विकास करना चाहिए। वास्तविक शक्ति सामर्थ्य के विवेकपूर्ण और सकारात्मक उपयोग में ही निहित है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह पुनः एक ऐसी ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद कथा लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। श्रोताओं, आपको आयुर्वेद दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

किया न्यूयॉर्क में कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत शागस का मुद्दा चर्चे में रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस के साथ हुए समझौते का विरोध करते हुए इसे एक बेहद खराब डील बताया। उनका कहना था कि जेगो गार्सिया एक रणनीतिक सैन्य ठिकाना है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में वैश्विक विवाद सुलझाने के उपाय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा के मुख्य विषय बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर उसे सुपर इंटेलिजेंस के तौर पर रिब्रांड करने का फैसला आम किया। इंडियन ऑयल के ईंधन की एक पहली खेप आज मॉरिशस पहुंची। इसमें 9,047 मेट्रिक टन पेट्रोल, 10,202 मेट्रिक टन डीजल, 15,505 मेट्रिक टन जेट एआई और 4,933 मेट्रिक टन मैरीन गैस ऑयल पाया जाता है। इस आपूर्ति के बावजूद ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज पुलिस में नई भर्ती हुई कांस्टेबल मेरी जेड कैथरीन के साथ मुलाकात की, जिसे हाल में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने इन आक्षेपों की कड़ी निंदा करते हुए इस नौजवान अफसर के प्रति अपना समर्थन जताया। और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर में एक आवासीय इमारत में गोलीबारी की वारदात पेश आई है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने एआई का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है।

0: केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ एआई के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जबकि फ्रांस ने इसी संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। कुणाल गोजी, आस्था गुबिन।
1: दुनिया में युद्ध और जलवायु संकट बढ़ रही है, इसी बीच एआई के विकास को नियंत्रित करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात की ये तस्वीर पेश की। अंतोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं। ऐसे समय में देशों को एक दूसरे पर अपनी निर्भरता समझनी होगी और मिलकर काम करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया को दो विरोधी गुटों में बंटने से रोकना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देने के कुछ ही मिनट बाद कहा कि उसके साथ बातचीत फिर से शुरू हो गई है। दूसरी ओर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रणनीतिक रूप से फिर खोलने के लिए अपनी शर्तें सामने रखी
2: हैं।
1: ईरान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एआई पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब आधिकारिक दस्तावेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह सुपर इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका इस तकनीक के विकास को और समर्थन देना चाहता है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी शक्तियां उन देशों के राजनीतिक फैसले तय नहीं कर सकती जिनके पास मजबूत सेना नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम के लिए निमंत्रण दिए। उन्होंने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर भी जोर दिया।
3: On a laissé nos enfants et nos adolescents évoluer dans un système qu'on maîtrisait assez peu, qu'on apprenait à découvrir nous-mêmes.
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने एआई के सेक्टर में अमेरिका के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग उठाई।
4: Institutions that do not reflect the people whose cooperation they require will eventually struggle to command their trust.
1: सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने छोटे टापू देशों की मुश्किलों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट और कर्ज का बोझ इन देशों पर भारी पड़ रहा है।
5: Do not seek strategic competition. We seek shared solutions.
1: उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय जलवायु आपदाओं के असर और उसकी भौगोलिक दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए।
0: एमएस टोम स्प्लेंडिड नामक जहाज बुधवार को पोर्टलुई में आकर लंगर डाल चुका है। इसमें देश के नए आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडियन ऑयल द्वारा पहुंचाई गई ईंधन की पहली खेप मौजूद है। इस खेप को प्राप्त करने के लिए व्यापार मंत्री बंदरगाह पर मौजूद थे। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने राशन वाले चावल की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है। एसटीसी का कहना है कि सफ़ेद लंबे दाने वाले चावल को खरीदने की उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण मॉरिशस के लिए कुछ खेपों के परिवहन में देरी हो रही है। वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी का कहना है कि वर्तमान में हर दिन 2.5 किलो के लगभग 12,000 बोरी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में दुकानों को सामान पहुंचाने के लिए एक डायरेक्ट सेल्स यूनिट भी स्थापित की गई है। एसटीसी का कहना है कि उसने इससे संबंधित शिकायतों के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। आज पोर्टलुई में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मेरी जेड कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल में एक नई भर्ती है, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार

0: कर रही है सिंचा मुटु की रिपोर्ट।
1: अपनी वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर पूनम कुपों के साथ नई भर्ती हुई पुलिसकर्मी मेरी जेड कैथरीन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और उनको लेकर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों की निंदा की। मेरी जेद कैथरीन ने प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भी वे हिम्मत बनाए रखेंगी।
2: De votre soir là, donc toujours garde la tête haute et malgré toutes les difficultés, nous là, donc au petit bout, fait notre travail correctement.
1: Mary Jade Catherine ne hal hi mein Pop NEC police station mein apni training shuru ki hai.
0: सऊदी अरब का राष्ट्रीय दिवस कल मॉरिशस में मनाया गया। त्रियानों में सऊदी अरब के दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह में विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भाग लिया। ये अवसर मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को उजागर करने का था। अब्दुल बुलाकी।
3: त्रियानों में संयुक्त अरब अमीरात राजदूतावास की पहल पर मॉरिशस में सऊदी राष्ट्रीय दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। कई महानुभाव मौजूद, जिनमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल। मौके पर अपने भाषण में मॉरिशस के लिए सऊदी राजदूत फैयज मिशेल अल्तमियात ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और लगातार विकसित हो रहे संबंधों पर जोर दिया। कई क्षेत्रों में सहयोग दर्ज, जैसे आर्थिक आदान प्रदान, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और जनताओं के बीच संबंध आदि।
4: सऊदी अरेबिया एंड मॉरिशस एंजॉय वार्म एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन।
3: सऊदी अरेबिया और मॉरिशस के बीच लंबे समय से रिश्ते कायम हैं, जो दोस्ती, परस्पर सम्मान और समान हितों पर टिके हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात को खुशी है कि मॉरिशस में कई क्षेत्रों में कई परियोजनाएं साकार करने में अपना समर्थन और योगदान दे पा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य, जल, सामाजिक आवास, स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय मूल ढांचा, शहरी विकास, मानवतावादी सहायता और राहत कार्रवाइयां। इस तरह मॉरिशस की जनता के कल्याण और मॉरिशस के विकास में योगदान दे पाया। समारोह के दौरान विरासत, परंपराओं और साथ में वहां टेक्नोलॉजिकल विकास की भी चर्चा हुई, जिनमें आर्थिक एवं डिजिटल परिवर्तन के सिलसिले में सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख किया गया। सऊदी कूटनीतिज्ञों के लिए ये तरक्की मॉरिशस के साथ रिश्तों को मजबूत करने का मौका भी प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं और पहल से साझेदारी और भी सुदृढ़ होने वाली है।
0: और समाचारों की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत चागोस का मुद्दा चर्चे में रहा। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: न्यूयॉर्क में राष्ट्रसंघ महासभा के कार्यों में भाग लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मंगलवार को अपनी सबसे पहली बैठक लगाई। मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच चागोस वापसी पर प्रमुख रूप से चर्चा। कुछ समय बाद प्रेस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह पर प्रभुसत्ता लौटाए जाने की यूनाइटेड किंगडम के फैसले की निंदा की। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जेको गार्सिया सैनिक अड्डे की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि मॉरिशन प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया गया था कि एक सुझाव के लिए सब कुछ किया जाएगा। इस मामले पर बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री वेज स्ट्रेटिंग ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में बताया कि यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को चागोस वापसी के मकसद से तय समझौते की फिर से जांच की जाएगी।
0: मॉरिशस की मौसम विज्ञान सेवाओं में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मौसम विज्ञान सेवाओं के कार्यकारी निदेशक ने 2027-2031 की रणनीतिक योजना पेश करते हुए घोषणा की कि इसमें नई चेतावनी प्रणालियां यानी अलर्ट सिस्टम शामिल होंगी, जिनमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग और जोखिमों का बेहतर संचार शामिल है। आयुर्वेद भारत की सदियों पुरानी चिकित्सा परंपरा है जो केवल इलाज पर ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर भी जोर देती है। आयुर्वेद दिवस

0: के अवसर पर आयुर्वेद फॉर हेल्थियर टुमारो विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन आज फिनिक्स स्थित आईजीसीआरसी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग ने किया था। इसमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, मॉरिशस में आयुर्वेदिक चिकित्सकों और आयुष क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने हिस्सा लिया। अशिता रघु।
1: एक प्राचीन परंपरा जो आज भी प्रासंगिक है, आयुर्वेद में बीमारी से बचाव, स्वस्थ आहार और शरीर एवं मन के बीच संतुलन पर विशेष जोर दिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस कम प्रदर्शनी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी एक अवसर रहा।
2: अब तक तो हम केवल ओपीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें तो इंडोर होगा यानी कि पेशेंट एडमिट होंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट भी देंगे जाकि जिससे लोगों को उसका लाभ होने। तो अभी
1: प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली में बढ़ती दिलचस्पी के बीच मॉरिशस में भी आयुर्वेद को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है।
3: आयुर्वेद हमारे पूर्वजों के साथ मॉरिशस में आया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद के बताए हुए पद्धति पर चलें, क्योंकि इनमें बताए हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेद में बताए हुए औषधियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकित्सक के मतलब एडवाइस पर हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम आयुर्वेद का एक तरह से जो सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
1: कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए दो हस्तियों को सम्मानित भी किया गया।
2: तो अलग अलग विषयों पे जो है आज हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें डायलॉग डिस्कशंस होंगे। वेरियस पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स मिलके बैठ के जो है वो आयुर्वेद को कैसे मॉरिशस में और जो है वो मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे।
4: मैं यही चाहूँगा कि ये सम्मान 1.2 मिलियन में, ये जो धनवंतरी है, एक छोटा धनवंतरी के रूप में 1.2 मिलियन के लोगों में प्रतिष्ठित हो। इसका मतलब आपके में एक ऐसी विद्या हो जो अरि के रूप में, एक एनमी के रूप में डिजीज को मारेगा, तो ये धनवंतरी की खूब खूब एक विद्या है।
1: भारतीय उच्चायोग ने क्षेत्र में आयुष को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
5: हमारा स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और हमारे एनवायरमेंट के, हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन और आयुर्वेदा का जो के बारे में जागरूकता फैलाने का जो हमारा प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये हम मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं पिच होता है, ये साथ के साथ पोजीशन होता है। और आयुर्वेदा में जो तमाम बेनिफिट्स हैं उससे हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, एक अपनी डेली रूटीन्स, एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन सब में हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है।
1: वही राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने कहा कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है।
6: विजय एंगेज एन कैंपेन दे सेंसिबिलाइजेशन विजावी ला पॉपुलेशन पोर की ला पॉपुलेशन कॉम्प्रेंड टू बन बेनिफिस की कैपेबल गागने एन यूटिलाइजेंट ले प्रोडुई आयुर्वेदिक।
1: इस तरह ये आयोजन एक प्राचीन चिकित्सा परंपरा को सामने लाने के साथ साथ बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी बना।
0: आज सुबह बेन में एमएमएम ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। दल के सदस्य एमएमएम की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए, जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रिजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से एमएमएम को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने पार्टी की यात्रा और उन विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जिनका उसे वर्षों में सामना करना पड़ा है। इस जुटाव की अध्यक्षता पार्टी के कई नेता करेंगे, जिनमें आर्यन नवमारी, अजय गणेश और राजेश भगवान शामिल हैं। आज एमएसएम ने भी अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। एमएसएम का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है।
7: एमएसएम के अध्यक्ष जूली जॉगो ने हर एक नागरिक की स्वतंत्रता की इस नई एजेंसी और साथ में इस कानून की संवैधानिकता के संभावित प्रभाव पर प्रश्न उठाया।
8: C'est un texte sacré qui vient drafté avant l'indépendance et qui définit pas juste nos cadres légaux, mais l'identité même nous pays. Et ce que nous constatons.

0: Alors que tu mets un comité Djibouti, comité qui s'appelle Constitutional Review Commission, pour le travail, l'eau, la possibilité d'amendement constitutionnel, mais qui fait partie inclure ça l'amendement pour créer sa National Crimes Agency là.
1: इसके अलावा जो लेशागों ने शागो इस मामले पर भी बात की, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर भी टिप्पणी की। उनके मुताबिक 2 वर्ष बीत चुके हैं और जनता को इस मामले में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें एमएसएम की ओर से आयोजित 3 हालिया जुटाव शामिल। और विदेश में, दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन के पास एक आवासीय इमारत में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हमलावरों ने एक घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 14 लोगों पर गोलियां चला दी। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में चोटों के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल धूप खिली रहेगी, लेकिन पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो पर दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:58 पर सूरज उगेगा और शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

बहन लीन बेलेरिवेसेश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री धनमराज ओजाइब, जो काहो संजय दत्त नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। एवेन्यू मोतेला बुट में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदायशी नामची दी और जो जेल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन की 11 बजे उनके घर एवेन्यू मोतेला बुट से उठाकर सेंट जॉर्ज दे सालिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। कौबम्बई नंबर 2 वाकवा में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यवती गोपाल पैदायशी नाम सोनू और जो साकुन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर कौबम्बई नंबर 2 वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:30 PM। नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री काट्रोबोन में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सतभामा हुला पैदायशी नाम परन सिंह और जो राधिका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे उनके बेटे भुवन हुला के घर नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 12:10 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: घड़ी मिलाते चलिए शाम के 6:30।

जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रोग्राम नई सोच। शाम के 6:34 हो गए हैं। मैं हूँ परी आपके साथ। इस खूबसूरत गीत के साथ आपका वेलकम कर रहे हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। जिंदगी का इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है ना दोस्तों, कि हमें कोई रिहर्सल नहीं मिलती। जो सीन आता है वही लाइव परफॉर्म करना पड़ता है। कभी स्क्रिप्ट समझ आती है और कभी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और लगता है कि कभी कभार जिंदगी में हर चीज़ का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। कहते हैं ना कि कभी कभार हंस बस हमें चलते रहना है, कभी कभार हमें बस सीखते रहना है और अपना बेस्ट देते रहना है। तो हम अक्सर हम देखते हैं दैट जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पास इतना कुछ अच्छा है, हमारे पास उतना क्यों नहीं है। तो लाइफ कंपैरिजन्स के लिए बनी ही नहीं है। उनको जो मिला है वो उनका है, हमें जो मिला है वो हमारा है। शायद हमारी ज़िंदगी देखकर भी कोई सोचता होगा कि वाह उनके पास कितना कुछ है। तभी तो हम कहते हैं कि लाइफ में ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर जो चीज़ें हैं, खुशियाँ जो हैं, वो पैसों से नहीं मिलती। पैसों से आपको लग्जरी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों से भी मिलती है। परिवार का साथ, अपनों का साथ, या फिर कभी कभार एक प्यारा सा दोस्त जिसके साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ पीते हुए आप जिंदगी का लुत्फ ले सके। तो जैसे हमने कहा कि जिंदगी तो है खूबसूरत और उसे जीना जरूरी है। तो अभी के लिए आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं और जिंदगी के मायनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो खूबसूरत सा गाना है हमें ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि लाइफ में हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। जो भी सिचुएशंस आपने पार की है, शायद आपसे बेटर इसे और कोई पार नहीं कर पाता। जो भी समय आपने देखा है, आप ही जानते हैं कि आपने कितना कुछ सहा है और आज आप जहाँ पर पहुँचे हैं, ये भी एक अचीवमेंट ही है। सो ज़िंदगी को आप इन्जॉय करें, ज़िंदगी को आप खुल कर जिए। अभी के लिए सोनू निगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करेंगे। इसे हमारे सभी सुनने वालों के नाम, सभी लिसनर्स के नाम, स्पेशली ये गाना जिनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हमारे प्यारे से विशाल भैया। आप भी दिन भर काम करते हैं, हम जानते हैं कि थकान होने के बावजूद भी चेहरे की वो मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। तो बस दिल से कहेंगे आपको थैंक यू, आपके नाम ये प्यारा सा गाना, और बिल्कुल यही कहेंगे हमारी प्यारी सी रीना भाभी के लिए एंड द एंटायर किचन टीम जो 24/7 हमारे साथ जुड़ी रहती है। बिकॉज घर जाने के बाद भी दिमाग में तो यही चलता रहता है कि कल सुबह क्या कुछ कंप्लीट करना है। तो बस आपको कहेंगे थैंक यू, और शायद ये गाना आपको खुशी दे। तो स्पेशली इसे डेडिकेट कर रहे हैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, विशाल भैया, रीना भाभी और सभी हमारे किचन टीम के नाम। एंजॉय दिस वन।

नई सो। और जी हाँ दोस्तों, ये है नई सोच प्रोग्राम। और कहते हैं ना कि हमें हर दिन स्ट्रांग रहने की ज़रूरत नहीं होती है, और कभी कभार ये भी होता है कि कुछ डेज़ आप काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ डेज़ काफ़ी थका हुआ फील करते हैं, कुछ डेज़ आपको लगता है कि आपको बिल्कुल बात भी नहीं करनी है, और कभी कभार आपको लगता है कि बस यू सिंपली नीड टू ब्रीद। सो कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो प्रिटेंड करने से नहीं आता, कि सब कुछ ठीक ठाक है। जो ऐसे आप फील कर रहे हैं यू कैन प्रटेंड, यानी कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपको हर चीज़ में प्रटेंशियस बनने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार हम दूसरों को दिखाने के लिए भी खुश रहने का एक ढोंग करते हैं, और कभी कभार जब हमें कोई पूछता है कि सब कैसे चल रहा है तो हम बोल देते हैं कि सब अच्छा ही चल रहा है, बट ओनली वी नो दैट वॉट वी आर गोइंग थ्रू। और ज़िंदगी में ये जो उतार चढ़ाव है ये कभी नहीं रुकते हैं। एवरी डे कुछ अच्छा होगा, एवरी डे कुछ बुरा होगा, बस हमें इस एहसास के साथ जीना है कि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिली है और इसे आपको खुलकर जीना है। सो अभी के लिए हम भी लेकर आए हैं हमारा ये प्रोग्राम नई सोच, जहाँ पर हम भी तो इंसान हैं और जो हम महसूस करते हैं वो हम आपसे भी शेयर करते हैं, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। और ज़िंदगी में अगर चीज़ें शेयर की जाए ना तो फिर मन थोड़ा सा हल्का हो ही जाता है। तो अगर आपको भी कभी कुछ महसूस हो कि आपको शेयर करना है, आप बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ हम तो आपके दोस्त हैं। रेडियो के ज़रिए ही एक रिश्ता बना है, लेकिन एक सच्चा, एक प्यारा रिश्ता। तो बस दोस्तों, ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे। अभी के लिए तो हमारा ये प्रोग्राम नई सोच, जहाँ पर हम लेकर आते हैं कुछ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल गाने, और ये गाना तो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। कभी कभार ज़िंदगी में हम हार कर थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब एक बार फिर शुरुआत नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ये गाना कहता है कि ज़िंदगी की तो यही रीत है, और हार के बाद ही जीत है। आज हार है तो कोई बात नहीं, जीत तो होनी ही है, बस सही वक्त का इंतज़ार करना है और आपका बेस्ट देते जाना है। ज़िंदगी को खुलकर जीना, मुस्कुराकर जीना ज़रूरी है दोस्तों, और ये जो गाने हैं मुस्कुराने की एक वजह ज़रूर दे जाते हैं। परी का साथ, रेडियो मनोरंजन, नई सोच प्रोग्राम।

और जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं लाइफ का परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, परफेक्ट डे, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट कॉन्फिडेंस शायद एक साथ ये ना आए, जो है जहाँ हो उसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी हर रोज नई कहानी नहीं देती, कभी कभी वही कहानी देती है, बस हमें उसे पढ़ने का नजरिया बदलना होता है। पर्सपेक्टिव चेंज करने से भी सब कुछ चेंज होता है। तो बस जिंदगी में खुश रहना सीखिए, जिंदगी को खुलकर जीना सीखिए। सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गाना, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, दिलों की आवाज़। मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक, खूबसूरत गानों का कारवां RM3 रेडियो मनोरंजन पर।

0: 94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: और जी हाँ दोस्तों, शाम के 7:01 हो रहे हैं, बुधवार की एक खूबसूरत सी शाम जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूजिकल हमसफर बनकर दिलों की आवाज प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर शामिल होते हैं रोमांटिक गाने, सुपर रोमांटिक गाने। तभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, रात के 9 बजे तक बनूंगी आपकी म्यूजिकल हमसफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 इसी नंबर पर आपका इंतजार। अभी के लिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, अकेले हम अकेले तुम, उसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम। साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल टाइम रेडियो मनोरंजन के साथ।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गानों का कारवां आपके लिए हमने सजाया है ऑन रेडियो मनोरंजन परी का साथ. और यहाँ पर रेखा जी हमारे साथ आप भी कनेक्टेड हैं. बेटा अंश के लिए गाना डेडिकेट कर रही हैं. पोंबोंजे से हमारा साथ दे रही हैं आप और आपका पूरा परिवार. सो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे दारिन श्वेता, रविश प्रीशा, लवशा और अपाडू परिवार भी होशनुमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो बस ये यहाँ पर खूबसूरत गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे और आपका नाम शामिल

करते रहेंगे सुदेवी जी वाकवा से आई हैं अपनी गुड इवनिंग विशेस लेकर डेडिकेट कर रही हैं गाना ट्रियोले की दीदी ललिता और कुशाल परिवार के नाम दीदी सुनीता जेविना मालिंगा की केशनी परनीता और सभी राम रतन कुआरू परिवार के नाम साथ ही कहती हैं दैट जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं सबके नाम एक स्वीट सा गाना थैंक यू सो मच सुदेवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो मनोरंजन पर मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर रात के 9 बजे तक

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: कहते हैं कि कुछ बातें जो हैं वो लफ्जों से कहीं नहीं जाती और कभी-कभार मोहब्बत आंखों से पढ़ ली जाती है अगर कोई सामने हो अपने दिल के करीब हो तो शाम ठहर सी जाती है और अगर आंखों से दूर हो तो फिर याद ही करीब आ जाती है अभी के लिए ऐसे ही कुछ रोमांटिक अंदाज में ये प्यारे गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं पनाव कुमार सानू सपना मुखर्जी की आवाजें आंदोलन फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम शाम के 7:27 परी का साथ है रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 9 बजे तक

और चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम दिलों की आवाज जहां पर रात के 9 बजे तक हम आपकी इस शाम को रात को सजाते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ यहां पर विजया जी हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं नजर में तू और जहां देखो वहां तू रेडियो में तू और जहां पर भी सुनो वहां पर तू वैसे तो यही होता है हमारा ये जो MBC रेडियो है बी इट RM2 RM3 बस आपका मनोरंजन हम करते रहते हैं आपका एंटरटेनमेंट करते रहते हैं और आपकी लाइफ में मस्ती को हम घोलते रहते हैं वैसे अभी के लिए तो कोशिश हमारी यही है दैट आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और जहां रेडियो वहां पर आप यानी कि हमारी प्यारी से विजया जी सो थैंक यू सो मच ऐसे ही खूबसूरत गीतों के साथ हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे एंड फॉर नाउ ये जो हमारा प्यारा सा प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ रोमांटिक गाने लेकर आए हैं तो उसमें आप भी हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं सो कीप एंजॉइंग कीप लिसनिंग RM3 रेडियो मनोरंजन

आगे आप और पीछे पीछे हमारे ये प्यारे गीत सुबह से लेकर शाम तक यही खूबसूरत म्यूजिकल कारवां आपके लिए हम सजाते हैं सो स्वागत करते हैं हमारे सभी लिसनर्स का रात के 8:10 हो गए हैं बुधवार की ये खूबसूरत सी रात जहां पर लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज तो अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को बहला रहे हैं और शामिल होता हुआ ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जो आप इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं उम्मीद करते हैं दैट इन गानों के साथ आपका दिल भी बहल रहा है और आपके दिल को बहलाने के लिए ये जो प्यारे ट्रैक्स हैं अभी से लेकर रात के 9 बजे तक चलने वाले हैं सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ट्यून इन किया है आपने RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 5250-6200-5250-6200 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: एंड वेल, रात के 8:33 हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मनोरंजन। रेहाना जी फेनिक्स से हमारा साथ दे रही हैं। सो अदा आदाब और प्यार भरा सलाम।

आपके नाम कुछ प्यारे गाने यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और उन्हीं गानों में शामिल होता हुआ आपका नाम भी। एक वाली गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम साथ देने के लिए शुक्रिया। खूबसूरत गीतों का कारवां है ऑन रेडियो मनोरंजन, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक।

So, well, खूबसूरत गीतों के साथ अब वक्त आ चला है जहां पर मैं आपसे लूं अलविदा. It's time for Pari to say goodbye. लेकिन गानों का कारवां जारी रहेगा. थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे आप भोजपुरी प्रोग्राम. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. उम्मीद करते हैं एक बार फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी और साथ देते रहिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. परी साइनिंग ऑफ. मुलाकात होगी जल्द. तब तक के लिए रात को एंजॉय करें इन खूबसूरत गानों के साथ.

0: Continuous music.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
2: Bhojpuri, Tadka. Bhojpuri, Tadka. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा

0: ama.
1: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
2: रात की नौबत के 5 मिनट हुआ था। आज बुधवार की रात, बुधवार 23 सितंबर साल 2026। सब संगतियालों के, सब भाई बहनों के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह एमबीसी रेडियो मनोरंजन और एमबीसी रेडियो मॉरिशस दोनों चैनल पर चलता है प्रोग्राम भोजपुरी चरका धमाकेदार कार्यक्रम, जहाँ पर नाची रह सक, गावी रह सक, झूमी रह सक, कमरवा डुलाई रह सक। और बेशक की प्रोग्राम अभी चली टिकटॉक पर भी, टिकटॉक पर सब बनने के देखे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। मन करता कोनो गीत सुने के टिकटॉक पेज पर एसएमएस करिए या फिर टेलीफोनी कर रखा जगो दे विद जगो विद सैंक पर। ये प्रोग्राम में ढेर कुछ बा बॉलीवुड न्यूज, खाना खजाना, व्यंजन, कहानी और ढेर कुछ बा गीत, खाली गीत नहीं मांगी रहा सर। ये प्रोग्राम में ढेर कुछ हमने शेयर कर रहा सर तेलों के संगे। और बढ़िया गर्म करता भैया, आज दिन के तक खूब गर्म कर लग, और सांझ के भी घर के भीतर जैसे जैसे आग बिगड़ता, बढ़िए बढ़िए गर्म। ठंडा के मौसम चल गया भैया, अब गर्मी के मौसम आवा था, तब गर्मी के मौसम के चेहरा सामना करे के का करब। नाचे गावा झूमक कमरवा डुलावा और गर्मी के भगावा आंक मारेला। ये अभी रात के खिके देख के आंक मारता हो, कोनो जोली जोली तंसा के देख के आंक मारता हुआ का। देखिए भौजी देख रहे कोई चौक मारा तो भौजी बिलनार चौकी से धरा दी है। चलो सुनिए ऐसे गीत, गीत बंधु मोहम्मद खालिद और रत्ना पदारत गीत गेले हवन आंख मारेला। अब रत्ना देखिए के आंख मारा तो है।

हमरा देख देख के आंख मारेला हमका देख देख के सिटी मारेला छोकरा छोकरी के देख के आंख मारेला सिटी मारेला लेकिन अब छोकरी तो शोतर एक थप्पड़ धरा दे मजाक करते हो अब छोकरा छोकरी के देख के आंख नहीं मारी था के देख के आंख मारी हो अब छोकरा छोकरा के देख के आंख मारी तो नहीं अच्छा बना कि छोकरी छोकरी के देख के आंख मारी तब ऊपर प्रॉब्लम बा तभी तो छोकरा छोकरी के देख के आंख मारी हम बात नहीं करते हो ऐसे नहीं करिए पब्लिक में कोनो छोकरी के देख के आंख नहीं मरे तो एक थप्पड़ खाली बा रात के 9:11 होता और बेशक अपन परिवार के कबो नहीं भुलैया ये परिवार जो है तोहर संसार ही परिवार तोहर खातिर सब कुछ करेगा परिवार नहीं बात कुछ नहीं बा भैया समाज में परिवार के बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहल बा और हमेशा रही अपन परिवार के कबो नहीं भुलाए के कहे कि माँ बाप जितना को लड़का लोग खातिर करेगा इस दिन में कोई कोई के नहीं करी अपन परिवार के इसने ही प्यार करते रहिए उनके साथ देते रहिए और नटराज रामकुरन उनके साथ देवतन उनके बड़का संगतिया वन और एग्जाम को शुरू होता है चेसी के लेंदी से ऑल द बेस्ट गुड लक नटराज गीतवा तोहर खातिर गरम तावा विशाल पौधा गीतवा गई लगबा तो सब लड़का लोग जो एग्जाम में भाग लिया होता आजकल वो चाहे पेशाक हो एन सी ए हो एस सी हो एच एस सी हो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक

हाई सांदी 26 सितंबर के वो बहुत ही बड़ा इवेंट हुई मॉरिशस में जलसा के रात बाद फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट अब इन मॉरिशस जहाँ शनिवार 26 सितंबर के रात के 7 बजे और ये हुई ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में और टिकट खरीदे खातिर प्री सेल टिकट है ₹500 दो है ₹700 और भूले नहीं कंसर्ट जो है कुणाल हीरीलाल की ओर से आयोजन कर और घर में ढेर मना आर्टिस्ट लोग भाग ले भोजपुरी आर्टिस्ट लोग तो ज़रूर जैसे हम बोली जो कंसर्ट है ये पहली बार मॉरिशस में ऐसे कंसर्ट आयोजन कर जाता और एक में जैसे हम बोली तो ढेर मना कलाकार बा एक में भाग ले होता रंभा राम तो हल फिर कुणाल हीरीलाल और इस भवन जा कुणाल हीरीलाल किशोर खीमिया रंभा राम तो हल नीरज गुप मधु रोशन सदा सिंह कृषि मोनिक और डीजे लोग रही वहाँ पर ही डीजे यानी डीजे अभी डीजे वकील स्पाइकी भी और नील के और गैस आर्टिस्ट रयन केतन महाराय राधन रामसा रविन सांबर और अवनीश एमसी की ड्यूटी करी तो भूलिया नहीं हाई सामदी की वैंसी सिप्ताम के रात के 7 बजे से रात ले ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में रही फर्स्ट जलसा के रात बा भोजपुरी लाइव कंसर्ट एक में ज़रूर भाग लिया जा अय्या देखे पर एक से पहले चाहे टिकट खरीदे के तो चल अभी कचिर सुनब जब कुणाल हीरीलाल जो है मस्त माइंड है लाइव कंसर्ट की और आवाज़ में वो गीत और एक गीत हमने चलाओ तो इसे सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगत यारों के नाम

मार ताली मार और संगतिया लोग तू बोला तू अगला जन्म में कौन सी बनी खोजबा हमसे पूछबा था अगर अगला जन्म मिली तो हम एको तितली बनी खोजब तितली की मतलब है पापियों अब पापियों कहे पापियों ई खातिर कहे कि पापियों वो लीब रहेला वो उड़ल करेला तो हम भी अगर अगला जन्म मिली तो भगवान से बोला तू उनके इंसान नहीं बने प्रभु तू उनके एगो तितली एगो पापियों बना दिया हम सगरों उड़ल करब और तू कुछ बनबा बोला था जब अगला जन्म मिली था ढेर कोई बोला था हम शेर बनब कोई बोला हम घोड़ा बनब कोई बोला था हम एगो राजा बनब कोई बोला था हम एगो मिलियनेयर बनब तो सब कोई क्या अपन अपन सपना बा अगला जन्म के बारे में और हमने की मान्यता यह है कि हाई जब शरीर मरेला तो आत्मा नहीं मरेला है आत्मा है शरीर के छोड़ के दूसरा शरीर में प्रवेश करेला इट डिपेंड्स ऑन द पॉस एक्शंस कौन एक्शन कर ले वह निमन एक्शन कर ले तो निमन शरीर मिली या तो मोक्ष मिली मोक्ष मिली तो भगवान के चल जाब सर अगर मोक्ष नहीं मिली तो फिर से परी दुनिया में आएगी हाँ कि नहीं तो अगला गीत जो है को पोतपोरी है गीत गवाए विभा चिंता बनी गए वन गीत चलावती से सब संगत यारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हो वन जा टिकटॉक पेज पर देखो हमने की दिखा था और रेडियो पर सुना था वन आप हवन काविश प्रिया न सिमलु अनिमाक्स रानीपुरन श्वेत रेशमा लाला कुतना मोहर हुसैन सरिता कनाय सरिता जी नमस्ते लवली कौर भूब प्रेम मीशा निर्मल खुदी कृति शाह सेवियर एंजल संध्या रामनवरत नौशाद नेहा अविनाश और रवि बंगारू रवि बंगारू बराज हो नाचा तमनी के संगे नाचा भैया कमरवा डोलावा दिव्या रवि बंगारू की ओर से है गीत तोहर खातिर रवि बंगारू गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और सब परिवार के नाम सत्यानंद मुनि हेलो डीजे सिंह राम सिंह श्री हरिशन

दजय सिंह राम सिंह सुरीनाम से हुआ नमस्ते जी। और अगला गीत वेदना के नाम आप हुआ कैटरबोन से, और कैटरबोन में जितना कोई हमने देखा था सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर सब कोई खातिर अगला गीत चला हुआ सर रेहाना जमन ई बी साधुवन करुताई है गीत तोहरो नाम। तो चल एक साथ गीत सुन अब सर गीत गवाई है पोटपुरी विभा चिंतामणि की आवाज़ में।

हमने के बार आदमी के आशीर्वाद हमने पर हमेशा रहेला आशीर्वाद को बहुत बड़ा चीज है अगर तोहर पर तोहर बार आदमी का आशीर्वाद बात है तो जिंदगी में हमेशा कामयाब होइबा तू प्रगति करते रहबा और आसमान के बुलंदियों तक छूबा हमेशा अपन बार आदमी लोग के आदर सत्कार करिया और लोग के आशीर्वाद प्राप्त करिया रात के 9 बज के आधा हुआ था और अभी अगला गीत चली घर घर में झगड़ा सुजीरा जीवन गीत वागे वनना और आज गीत चली संजय हरिचंद के असगर पत्नी और बेटी पीतों से सब हरिचंद परिवार के नाम अमृता गणेश पीतों से वन मालिनी दरबारी रेस काली से हाय मालिनी गीत और खातिर फिर राजमना लोंग चिबुग राजा स्टीव नानू प्रवीण भैरव और श्याम मंगल अगला गीत लोग के नाम और अभी टिकटॉक पर ढेर कोई हमने के फॉलो करा था बेशक तो लोग खातिर अगला गीत चराव अब्जा जी हाँ सुमन जलसा ग्रुप गीत तोरो खातिर आशा तिराना नमस्ते है गीत तोरो नाम वर्ष हेलो फिर है गीत चली बिपिन बी खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अनिता लाल जी हेलो और साथी साथी रिवेज पर से हवन गीत तोरो नाम तोर माता जी तोर पिताजी तोर सब परिवार के नाम हेलो रिसोल रोनी मगर हयो गीत तोरो नाम राम प्रसाद बैरवा फिर हई गीत चलाओ अब्स करुणा खातिर हाय करुणा मामून भी उनके साथ देवत हवन नोआ और सराती और रिसोल जी हाँ दोनों संगत या लोग सैतो बैस एस एस कॉलेज आलन सर विराट किम की सुनते हैं सर माइकल जी है गीत तोरो खातिर देविया है तोरो खातिर अक्सल और जैन भी अपनी के साथ देवत हवन दीपक रिसोल चलो है गीत तोरो नाम बहुत ही प्यारा सन गाना है घर घर में झगड़ा झगड़ा काहे होला चल एक साथ सुनम जा

0: भोजपुर का प्रोग्राम हूँ कार्यक्रम जहाँ पर केवल भोजपुरी गीत चल रहा है बॉलीवुड के गीत नहीं चल रहा हो एक संख्या बोलता है तू मेरी जिंदगी है ना भैया ये करते बेरा सब ध्यान से सुने के तो ध्यान से नहीं सुने रहा सब कहाँ बोला भैया बोला था तो प्रोग्राम है भोजपुरी तड़का एक में खाली भोजपुरी गीत चले रहा और हमेशा नीवन आदत डालिया रोज के सूरज के उगे से पहले तू नींद से जाग जाइया और फजर के उठ के नहा धोवा के पूजा पाठ करिया सूर्य नमस्कार करिया मेडिटेशन करिया योगा करिया यज हवन करिया एक से हमने की जिंदगी में जितना ग्रह बा सब ग्रह दूर हो जितना कष्ट है सब कष्ट दूर हो और भगवान की जाप करिया भगवान के नाम लिया फजर के एगो लिया हो कि बोला ब्रह्म मुहूर्त ओकर में पूजा पाठ हो रहा हूँ कि नहीं तो सूरज उगे से पहले चेहरा जाग जाए के एगो निमन आदत चेहरा डाले के अगर हमने निमन का आदत तो अपन में डालब से तो अपन निकालो के भी सकब सब बोली हाँ कि नहीं तो अगला गीत सब्जी दादी हाँ एगो संग मंगल सब्जी दादी तो गीत अब चलब से सब्जी दादी श्याम मंगल सब्जी दादी तोर खातिर नीरज राम धन वेनी सीताली से अवन की तोर पत्नी खातिर भी और फिर प्रेत्स गीत सब्जी दादी तोर खातिर अंकि बोलते नमस्ते चाचो कैसे मर भतीजा और माला भी उनके साथ देवथुन ललिता माला और हई गीत हमने चलाते से सुनीता राजन और अनीता खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना की कोशिश करा था लाइन नाम ही रहा था तो गीत तोरो नाम भी कर सकते लाइन पे कौन से मिला जा भी ओके चलो कौन से मिले टेलीफोन करा था वन ओके हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते
1: प्रताप जी
0: श्रीमती जी
1: सुयाग से
0: कैसे समाचार
1: समाचार सब ठीक है
0: आज बड़ी गर्म कर लग बा हो कि नहीं
1: हाँ बहुत गर्म
0: भाप हो दिन
1: कैसे हैं
0: हम ठीक हैं तू कैसे हुआ बोला था
1: हाँ
0: तनी संतीक तनी संबीमार हाँ तेरा संते इसने रही रहना
1: तोरा बहुत लासंते नहीं ठीक बा
0: हाँ
1: एगो गीत डाल दिया
0: हाँ बोला कौन गीत सुन बा
1: सीधा के गीतवा डाल दिया भोजपुरी गाना
0: विनोद
1: बाप दादा के बोली
0: है बाप दादा के ऐसा जोड़ी बाप दादा के बोली
1: बहुत जोड़ी गीत है बहुत जोड़ी
0: खुशी रहेगा गीतवा
1: हाँ खुशी रहेगा गीतवा सुने के और जाने वाला एगो बात बोला था तोरा और सीधा के देखत रही ना हम टेलीविजन में हमर भाई रह कर्णियन
0: पारे
1: भाई के नाम रहल गौतम महेश
0: एता
1: जब जब हम टेलीविजन में ओके देखत रही ना हमरा हमर भाई के याद चलावत रहल
0: ओ हो हो हो हो हो
1: भाई तो नहीं बा भाई तो चल गए 10 बरिस हो गए भाई के याद चलावेला ओकर बोलिया सुनीला
0: तो भाई पारे ओकरे देखा पारे रहल

0: भाई
1: ओके देखम त बुझाय हमर भइबे खाड़ा में हमर आगे
0: जदा
1: मुआक मजे कोली करल
0: बाफुते
1: उदमे ए ता
0: ये
1: किस्मा हां त बाप दादा लोग के बोली त बिंदु को गीत चली बाग टू बाग एगो प्रीतम कुमार दुचुआ के सब्जी दादी और दूसर का गीत विनोद सिद्दत के बाप दादा लोग के बोली और है गीत वा जुन हा चलावते से सब संगत या लोग खातिर भी राविश मंडु कर बाप कर माँ कर माँ रेखा भाई भौजी चीजों फोन सब मंडु परिवार के नाम चाचा आत्मा राम गीत और खातिर चाची ललिता कुशल त्रियोले से वीरा पेन रोसाई प्रतिमा केत Sisanko, Sorju Hawan, Saint-Aubin, SSS College, se, Pila Flora, se, Vishal, Bisisar, Okar Gharoli, Okar Bita Bhavesh, or Sabisisar Parivar ki naam, Kyupip se, Subir Ramnurat, Okar Gharoli, Okar Dugoleka, or Sab Ramnurat Parivar ki naam, Bohut Bohut Piyar ke saath, or Hegi Trapsa, Sudevi Virasami, Gitoru naam, Bano, Hegi Toru Katir Bandana, Sunita Rajan Anita, Mala, बानों बीएम के साथ देवत्वन तो चल एक साथ सुने सब्जी दादी और बाप दादा लोग के बोली बाक टू बाक दुगुगाना

हजन मकई हा एगो फल भी एगो सब्जी भी हा और इम कर प्रयोग ढेर तरीका से होला और जो मकई हज के माई बोईला सा है तो इकन में ढेर मना तत्व बा जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर और विटामिन और एक बुई करके खाल जला बुई मकई या मकई के ग्रिये करके भी खाल जला को मैं जीबे डाल दे बा ग्रिये करके तो बड़ी मज़ेदार और मकई के दाना लागे माई जिसे बोईला सा ओके मुर्गी के भी दे रहा सा खाई के और मकई जुन है मकई के ओकर दाना हमनी जरीफिया में भी सेवी करी रहा सा मीन उन पकड़े बता सकबा मकई की दाना डाली और मकई बड़ी ही स्वादिष्ट है और मकई पूरा साल भर साल मिलेगा बाजार में जी बा तो बोल बा मौसम के बोला भैया मकई बात हो लगे तो मकई थोड़ा दे और जुन मकई तान रह रहा जैसे अच्छा रहा खाई के तो टेम्पो में डाल दा मकई के को तीन चार को मकई मिली नमक डाल दा पानी डाल दा जो कुछ सुप्रे करी था तो मकई तैयार होकर माफ़ करिए अपन यहाँ के बिक दिया और मकई वा सगभग खाए पर ही आराम से तो भूले नहीं बाजार जाइब तो मकई ले ले आइए और अपन परिवार लोग के सर्व करिए और अगला गाना बधाई हो बधाई रही तक गजादर की तो अकेले वन बोबा सिंह के हरीश भाई का तेर काला छोटी पौला जी से मिशन क्रॉस रोड लाल माटी से रविराज सिन्हा बिच्छू को कर पत्नी स्वयं प्रभा बेटा प्रत्यक्ष और सब बिच्छुक परिवार के नाम हिरीश नारायण मिडलैंड से साइलेंट की ओर से ओकर बरका संगतिया फिर वीरानन दीन दयाल के नाम तो चले एक साथ सुने गीतवा बधाई हो बधाई

रात के 10 बजे तक दूसरा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन से अजय प्रताप सिंह सितालू के साथ रात के 11 बजे ले और संगत या लोग अब तो सुनाओ जहां हमने को छोटा सन कहानी और कहानी के शीर्षक बड़ी मजेदार कहानियां और कहानी के शीर्षक घमंडी राजा तो बहुत पुरानी बात है एगो राज्य में एगो राजा रहता वो

धनवान शक्तिशाली रहल बल्कि ओकर में एगो खराब आदत रहल उ बड़ी घमंडी रहल राजा के लगे कि ओकरा से बढ़िया बुद्धिमान या ताकतवर कोई नहीं बा उ गरीब लोग के हमेशा छोटा समझत रहल और अपन मंत्री लोग के बात भी कई बार नहीं सुनत रहल एक दिन एगो बूढ़ा साधु राजा के दरबार में गल राजा घमंड से पूछलक बतावा साधु जी ई दुनिया में सबसे बड़ा की बा साधु मुस्कुरा के बोलक महाराज समय सबसे बड़ा बा राजा हंस पर और बोलक हमरा लगे सोना बा धन बा महल बा समय हमर कमर का बिगाड़ सकेला साधु कुछ ना बोलक चुपचाप रगल कुछ दिन बाद राज में भयंकर सूखा पड़ गल खेत सूख गल तालाब खाली हो गल और लोग पानी खातिर परेशान हो गल राजा के महल में भी पानी कम पड़ गल राजा अपन सैनिक के आदेश दिलक कि दूर दूर से पानी के आवल जाए बल्कि पानी में कमी बढ़ती गल एक दिन राजा घोड़ा पर निकलल और रास्ता भटक गल बहुत देर तक ओकरा एगो छोटा सा झोंपड़ी दिखाई पड़ल झोंपड़ी में एगो गरीब किसान रहतल राजा पानी मांगी गल किसान के लगे बस एगो छोटा घरा पानी रहल किसान बिना कुछ सोचे उ पानी राजा के दे दिलक राजा पानी पी के पूछलक तू अपना अपन खातिर पानी हम के दे दिला किसान मुस्कुरा के बोलक महाराज पानी से जान बचेला धन दौलत से नहीं आज रउआ की जरूरत बा ई खातिर थोड़ा पानी देवत है राजा के मन में किसान के बात घर कर गल ओकरा पहली बार ऐसा एहसास होल कि राजा खोखला से आदमी दूसर से बड़ा ना हो जाला राजा वापस महल आके अपन घमंड छोड़ दिलक उ राज में कुआं तालाब पोखरा खुदवैलक और गरीब लोग के मदद करे लगल कुछ साल बाद राजा राज फिर से हरा भरा हो गल लोग राजा से अब ना डरे बल्कि राजा से बहुत प्यार करे कहे कि राजा के घमंड नहीं रहल कहानी किसी की है कि घमंड आदमी की कमजोर बना देवेला असली बड़प्पन धन ताकत या पद में नहीं बा असली बड़प्पन बा एगो व्यक्ति के नम्रता और उकर व्यवहार में तो हमेशा सीखिया जिंदगी में घमंड ना करे के चाहे कितना भी धन दौलत हो लग रही तो हम्बल रहिया जोची रहिया और जो है दयालु रहिया एक दूसरे की मदद करिए है घमंड कोई की काम नहीं आवेला रावण जैसा व्यक्ति की घमंड ना चलल तो हमने तो नर चुला है सा कि नहीं ऐसे में सुनब जा राकेश कोप की आवाज़ में अगला गीत अगिनानी बहुत ही प्यारा संगीत है और यह गीत हमने चलावत ऐसा आशा जानु खते कतेज रहेलन कर्मा कुमारी फिर शुभम शुभम के मंगेतर दीदी आशा जीजाजी और सब जानू परिवार के नाम देवेन नदी वाला वैनकूवर कनाडा से अमन रवि बंगारू एक गीत और खातिर अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से बाल गोपाल के दुगलैका और इंदिरा चिंताराम हमने के साथ देवधवन चंदन प्रिया सलोनी सब चिंताराम परिवार के नाम जानकी सी सहाय माताबाद से और बेटा बहू सब सी सहाय परिवार के नाम रतन निहाल गांवे से हवन पत्नी करुणा पापा विजय ज्ञान और चित्रा विश्राम मौदावे से रेहाना हसनाली गीत रीता और रेणुका के नाम तो चले एक साथ सुनाए गीत अगे नानी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो रेडियो।
2: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। भोजपुरी तड़का तड़का
3: भोजपुरी जरका प्रोग्राम गो कार्यक्रम जोन रोज की चलेला लेंदी से लेके दीवास ले रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और बेशक करमे तो बन पसंद है भोजपुरी गीत मांगे ले जा और ढेर कुछ ये प्रोग्राम में हमने की मिलेला सीखे के भी और खाना खजाना बॉलीवुड न्यूज एगो कहानी। और अभी थोड़ा सुन रात के 10:10 हुआ था और वो छोई तरका प्रोग्राम जाए रात के 11 बजे बॉलीवुड न्यूज़ अन नहीं जा और इतना जानी जा सके हमने के चाहे था।

हीरो आर्जन के बीच नहीं बना। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो रहा 14 जून साल 2020 के मुंबई के बांद्रा स्थित होकर फ्लैट में, वो 34 बरिस के रलन और कर मौत के बाद मामला बहुत चर्चा में आ गल। आईएम्स के फोरेंसिक टीम ने निष्कर्ष दिलक की हत्या ना बल्कि आत्महत्या के मामला रहल। बाद में सीबीआई भी लंबा जांच करलक। ओकर बाद मार्च 2025 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करल गल। सीबीआई के मुताबिक सुशांत सिंह के आत्महत्या खातिर कोनो व्यक्ति के उकसावे के पर्याप्त सबूत ना मिलल और एफआईआर में नामजद लोग के खिलाफ मामला बंद करे के मांग करल गल। हालांकि सुशांत सिंह के परिवार के वकील बाद में सीबीआई के रिपोर्ट पर सवाल उठैलन और रिपोर्ट के अधूरा बतैलक। ईजान के पक्ष आपत्ति सीबीआई के निरीक्षण से अलग अगर और बेशक साल 2020 के सितंबर 2026 तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले के मुख्य घटनाक्रम आसान नहीं रहल और बहुत वाद विवाद होकर मौत पर और 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपन घर में मृत मिला रहल। मुंबई पुलिस शुरुआत में मामला एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करलक और जुलाई 2020 में सुशांत सिंह के पिता शिकायत पर बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती आ कुछ और लोग के खिलाफ मामला दर्ज भेल। आरोप में आत्महत्या खातिर उकसावे समेत कई धारा शामिल रहल। 19 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट बिहार के दर्ज मामला की जांच सीबीआई के सौंप दिलक। साल 2020 में एम्स के मेडिकल राय मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष रहल कि मौत फांसी के कारण भल रहल ना कि हत्या के सबूत ना मिलल। सीबीआई लंबा समय तक मौत की परिस्थिति संबंधित लोग अलग अलग आरोप की जांच कर लन। सोशल मीडिया पर हत्या समेत कई तरह के दावा सामने आ लेकिन ई दावा के जांच के अलग अलग करके दिखल जरूरी बा। और बेशक सीबीआई बांद्रा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करल गल। सीबीआई के निष्कर्ष रहल कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या के मामला रहल। नामजद लोग के खिलाफ आत्महत्या खातिर उकसावे के पर्याप्त सबूत ना मिलल। और सुशांत सिंह आज हमनी की दुनिया में नहीं बा पर ओकर मौत पर आज भी स्पेकुलेशन होता। ढेर कोई बोला था कि ओके कोई मार के मुआ दिलक, कोई बोला था एगो आत्महत्या है, पर आज देख कोई नहीं सकल जाने कि है जो सुशांत सिंह जो सितारा रहल ओकर मौत सच्चे में कैसे होल बा। भगवान ओकर आत्मा के शांति दे। अक्सर ऐसे बॉलीवुड में होला है, पहली बार नहीं है, पर दुख की बात यह है कि ऐसे नहीं को कलाकार जो टीवी सीरियल शुरू करके बड़ा बड़ा फिल्म में आ रहा और एक दिन ओकर मृत शरीर मिलल ओकर अपार्टमेंट में वो टंगा रहा अपन बंसिलाते में। ढेर कोई बोला था वो आत्महत्या है, कोई बोला था ओके जान से मार दीवल कर रहा, पर आज देख कोई नहीं सकेला जाने तब भगवान नहीं जानेला कौन ची हो रहा। भगवान ओकर आत्मा के शांति दे। अब जेकर भी माँ बाप के लड़का है तो दुख तो बुझाला, ये तो ज़रूरी है कि जाँच पड़ताल छाँ करे कि हाँ कि नहीं। पर दुनिया में ऐसे हो रहा है कि कबो जो बात हमने ना सोचे अब सर वो बात हो चला। रात के 10:14 हुआ था तो सुना तो भोजपुर का कार्यक्रम और अगला गाना नाच मौसी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर गाना है। सुभाष शंकर गीतवा गैले हवन और है गीत हम चलावते सब भाई राफिक मोहित के नाम तायक से हवन, रोजीदा हाईलैंड से, भाई इब्राहिम पोटरी से, फातमा न्यू ग्रोव से और आफेज लावेनिया सैफिया से। आफेज कमरवा बड़ी जोड़ डोलावता और नाचता झूमता आफेज तय गीत हो नाम नाच मौसी।

ये बात सच है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जाता सब कुछ किने के आसान नहीं बा नहीं कहती भाई जैसा कि खाई के चीज अगर खाली किने खोजब तो सब पैसा फिनी हो जाए ये कहती भाई जैसा कि पारिस नहीं करिया अगर घर में सब खाना तैयार करे तो घर में खाना तैयार करिया ऐसे में तोरों खाना मिले तोर पति तोर लड़का लोग के भी खाना मिल जाए बाहर आके खाए के कहूँ कहूँ पर ढेर महंगा बड़ी महंगा बेचेलन सर हम नहीं माना करते हैं बाहर आके खाए कब कब वो परेरा किने के पर अगर फजर के बुनरे उठ जाए वो तीन चार बजे फजर के उठ के पका दी बा तो तोरों खाए की मिली दिन के तोहर लड़का के तोहर आदमी के भी सब कोई की खाए की मिली पर एगो बन वोलॉन्टे चेहरा स्ट्रॉन्ग वे पावर चेहरा डिटर्मिनेशन चेहरा फजर के पन आलोम डाल दिया और सोच दिया कि कौन सी पकई बता के सब कोई के खाए की मिली और जिन पैसा से जिन खाए के किने के रला वो पैसा बच जाए तो पैसा सब दूसरा चीज किने

तो चहला खब को वो दिमाग के इस्तेमाल करे कि भगवान का तेरे हमने की को सेवो एको दिमाग दे लगबा अब सब चीज को बकाली भाड़ा के नहीं खाए कि भैया तो सब पैसा फिनी हो जाए तब रोल कर महंगाई के जमाना बकाली मॉरिशस में नहीं है दुनिया भर में महंगाई बढ़ता तू चाहे जी कनाडा इंग्लैंड इटली ला फ्रांस जन फ्लाशन हो तई से जन हो महंगाई बढ़ ले जाता और महंगाई हमेशा बढ़ ले जा रहा वो कमती नहीं होला बढ़ ले जा रहा कहे कि दुनिया भर में से हुआ था तो महंगाई से बचे खाते सब गार्डनिंग करे अगर तो हर आंगन में जगह बा माटी बात अपन को खूब सौदे बनैया और हम देख रहे थे कोई पनीर बनावे सर धे मना चीज सब अपन हाथ से बनाए तो सब नहीं पर किने के अर्थ और पैसा बच जाए तो पैसा की बात करते सर तो अगला गीत है पसंद राज जुल्म की गवल रुपया आई रुपया सबके न चावेला भैया और पसंद राज बोलम की जुल्म के गीत है रुपया है गीत चरावती स संजय बिहारी की रोसे कर पत्नी कर बेटा पतो बेटी दामाद और कस परिवार के नाम रीता रेणुका की नाम भी गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई रात के उनकी सुनाता है गीत तलो के नाम भी रुपया शास्त्री बने माली कैसी बात समाचार भैया है गीत तोहरो नाम खासम खास

खन खना खन खन खना खन बाजेरा रुपया नाचे लाल सबके नचावे ला रुपया और मॉरिशस में जे के चेना धेर सारा पैसा पैसा बात है सब कुछ बा भैया पैसा नहीं बता कुछ नहीं बा हॉकी नहीं और पैसा के बढ़िए मोल बात काम करिया मेहनत से लगन से और पैसा कमैया ओवर टाइम में सब मिली तो जरूर करिया चाहे नहीं बोलिया कि ओवर टाइम नहीं कर बा ओवर टाइम जरूर करिया धेर मना पैसा मिली रात के 10 बज के आधा हुआ था तो सुना तो बहुत चोरी तरह का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ रात के 11 बजे ले हमने किया तलो के साथ अगला गीत राजकमल चिंतामणि गई हवन ओ सोनी देखा की तो हम चाहते इस वेदांश खातिर हेलो वेदांश वेदांश का तो बोन से हवन जा हमने के साथ देव थवान बहुत बहुत धन्यवाद त्रिकुटा त्रिकुटा हवन रोजेल से हाय त्रिकुटा गीत तो और नाम तो सब परिवार के लिए डॉक्टर अंजू है गीत तो हर मंगेतर और तो हर सब होने वाला तो हर ससुर सासू माँ खातिर और तो हर होने वाला परिवार खातिर भी विपिन भैया वन फ्लैक्स से हेलो विपिन गीत तो हर जिगरी दोस्त राकेश खातिर उदय धनी राम रिया जी पोस्ट से हवन और सब धनी राम परिवार के नाम प्रीतम राज जमीला गीत और खातिर किशन गुरियाप गीत और नाम और एक गीत चली श्रीमान श्रीमती काशी जी के नाम कर बेटा पतो और सब काशी परिवार के नाम ओ सोनी देखा चल एक साथ सुना जाएगी तो

भाई बहन लोग संग चलो कहीं जीत के संगी भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। टिकटॉक पर हमने के देख रहा, रेडियो पर सुन रहा, हमने के जगह खातिर हमने के सुनने खातिर शुक्रिया। चलो कैसे एस और फोन कॉल खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की तो मुलाकात हुई शाम के भजीर के, जी हाँ 6 बजे से 9 बजे ले एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना प्रोग्राम में। तब तक हमने की इजाजत दाओ जी प्रताप सिंह की ओर से सबको प्यार भरा नमस्ते, सलाम, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, नमस्ते, बाय, शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी म्यूजिक लवर्स का सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गीत अपने साथ एक खूबसूरत याद लेकर आते हैं। पुराने बॉलीवुड गाने की वो मिठास, वो ब्यूटीफुल लिरिक्स और वो टाइमलेस मेलोडीज जो आज भी दिल को वैसे ही टच करते हैं। तो आज की शाम अपनी यादों के साथ बिताइए, क्योंकि कुछ पल कभी पुराने नहीं होते हैं दोस्त।

कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गाने कभी नहीं बदलते और ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक पुराना गाना सुनते ही हम सडनली अपने पास्ट के किसी ब्यूटीफुल मोमेंट में पहुंच ही जाते हैं। कोई वजह नहीं होती, बस एक मेलोडी और हजार मेमोरीज। आइए उन्हीं सुनहरे पलों को फिर से जीते हैं सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

I really hope कि आपको हर गाना दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना गाना है जो सुनते ही आपको किसी अपने की याद आ जाती है ना? शायद वो गाने किसी स्पेशल पर्सन से जुड़ा हुआ हो, किसी जर्नी से या किसी अनफॉरगेटेबल मोमेंट से। म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल खास बात तो यही होती है, वो मेमोरीज को जिंदा रखते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को खोल कर एंजॉय कीजिए अपना सुनहरे पल में।

दोस्तों, पुराने हिंदी गाने में एक अलग ही मैजिक था ना, अभी भी है, था क्या? लिरिक्स में फीलिंग्स, मेलोडी में इमोशंस और आवाज में एक ऐसी वार्म्थ जो सीधा दिल तक पहुंची जाती है। आज के फास्ट लाइफ में जब सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है, दीज एवरग्रीन गाने हमें थोड़ा स्लो डाउन करने पर मजबूर कर देते हैं और ब्यूटीफुल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करने का फिर से मौका देते हैं। तो चलिए, अगला गाना स्पेशली आपके लिए गिनेशा की तरफ से ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे देखा जाए तो कभी-कभी एक पुराना गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, वो एक कहानी होती है, एक कहानी आपकी, मेरी, हम सब की। जी हाँ दोस्तों, किसी की मोहब्बत, किसी का इंतज़ार, किसी की दोस्ती, किसी की जुदाई और कभी सिंपली खुशियों की एक ब्यूटीफुल मेमोरी। आज फिर उन्हीं कहानियों को म्यूजिक के जरिए महसूस करते हैं सुनहरे पल में। तो चलिए, दिस वन गोज आउट टू यू स्पेशली ऑन रेडियो मॉरिशस इस खूबसूरत से शो में।

0: रहते हूँ।
1: Well guys, चलिए फिलहाल के लिए it's time for Ganesha to say goodbye to you। वादा तो हम हमेशा करते हैं वापस लौट के आएंगे और भी खूबसूरत खूबसूरत गानों के साथ और भी एक खूबसूरत सुनहरे पल शो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो